0: फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: नदी जमेजटेन.
0: नदी जमेजटेन. आह, सो सेक्सी.

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: के 6 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अभी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हैं उतरते हैं फीफा विश्व कप 2026 के मैदान पर, जहां पर शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ्स मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। ये फिनिश सन 1966 के बाद से विश्व कप में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। आपको बता दें कि किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। फैसले का दिन आ गया है। जी हाँ, वह महामुकाबला जिसका

का सबसे बेसब्री से इंतजार था आखिरकार आज होने जा रहा है। आज पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यूजर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होंगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। मैच की शुरुआत मॉरिशस के समयानुसार 11 बजे होगी। इस ड्रीम फाइनल को लेकर मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह सातवें आसमान पर है। आपको बता दें कि इस फाइनल का कोई भी पल मिस अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो MBC 11, MBC 7 और साथ ही MBC प्ले ऐप पर लाइव देख सकेंगे। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल का ध्यान भटकाना कम। जी हाँ, सरकार ने एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अब स्कूल के समय के दौरान छात्रों को अपने फोन बंद या संभाल कर रखने होंगे, सिवाय कुछ खास जरूरतों की। कक्षा में ध्यान भटकने, ऑनलाइन बदमाशी यानी कि साइबर बुलिंग को रोकने और स्कूल के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है स्कूलों में अनुशासन बढ़ाना और पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना है। सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज की मदद से ई पासपोर्ट को काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत एक सलाहकार इस नई प्रणाली को लागू करने के वास्ते तकनीकी सहायता और क्वालिटी चेकिंग की सुविधा देगा। और विदेशी स्तर पर पश्चिम एशिया में 4 महीनों से ज्यादा समय से जारी भीषण संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। इसी में शनिवार को अमेरिकी सेना ने बताया कि जोर्डन में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए उनके 2 और सैनिक मारे गए हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय ऊंचे इलाके पर हल्की सी बारिश होगी। दोपहर को सेंट्रल प्लेटो पर बादलों के घेराव के साथ वर्षा हो सकेगी। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर बरसात होगी। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगुनों के उस पार, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय लगभग 7:45 बजे, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:48 पर।

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: नमस्कार, सुबह की ये बेला है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आज रविवार 19 जुलाई 2026 की भोर की बेला है। ये रेडियो मॉरिशस पर आपका स्वागत है। भोर की ये शांत बेला आपको मंगलमय हो, इस शांति का लाभ उठाते हुए चलिए सुनते हैं हम आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम। आर्य सभा मॉरिशस के प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी से सुनते हैं।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा।

प्रिय श्रोताओं, ये अथर्ववेद का मंत्र है। इसमें वैदिक गृहस्थ जीवन के बारे में बड़ी सुंदर बात कही है। पहली बात कही गई है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो, अर्थात हमारे बच्चे कैसे हों, तो कहते हैं माता पिता के अनुव्रति हों। अनुव्रति का मतलब है व्रत के पीछे चलने वाले हों। यदि माता पिता का ही कोई व्रत नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई धार्मिकता उनके जीवन में नहीं, कोई अच्छे ग्रंथों को वो पढ़ते नहीं हैं, सत्य का व्यवहार नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, यदि उनके जीवन में कोई व्रत नहीं है, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि अपने बच्चों का भी कोई व्रत होगा, कोई संकल्प होगा? क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जैसे हम बड़े आचरण करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे जैसे बड़े आचरण करते हैं गृहस्थ जीवन में, वैसे वैसे बच्चे भी सीखने लगते हैं। तो कहा कि हमारे व्रत कैसे हों, अच्छे हों, माता पिता के संकल्प बहुत अच्छे हों। मात्रा भवतु सम्मना, हमारे बच्चे, हमारे सुपुत्र, हमारी पुत्रियां माता के समान मन वाले हों। जब मैं इस वेद मंत्र को पढ़ता हूँ श्रोताओं, तो मुझे याद आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जीवन। देखो ना, उन्होंने अपने माता पिता के लिए कितना बड़ा काम किया, जिस माँ के कारण अर्थात कैकेयी माता के कारण उनको वनवास जाना पड़ा, तो भी उस माता के प्रति उन्होंने कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं कहे। पूरे आप वाल्मीकि के रामायण को पढ़ करके देखो, वो पूछते हैं कि राजा दुखी क्यों है, मेरे पिताजी दुखी क्यों हैं, क्या बात हो गई? जब उनको ये पता चला कि नहीं, मेरा आज राज्याभिषेक नहीं होना है, मुझे तो चतुर्दश अर्थात 14 वर्ष का वनवास होना है, तो वो डगमगाए नहीं, वो बिल्कुल परेशान नहीं हुए। तो अपनी माता से कहते हैं वो, अर्थात कौशल्या तो जन्मदात्री माँ हैं, लेकिन वो आपको अपने समान सबको समझते थे। कैकेयी माता को पूछते हैं, तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्यो यदभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। ए मेरी माँ, बताओ मुझे किस कारण से, क्या आज्ञा है पिताजी की तो तरफ से, आप बिल्कुल निस्संकोच होकर के कहो। भरत को यदि राज्याभिषेक करना है तो मैं सहर्ष अपने छोटे भाई को वहाँ बिठाना चाहता हूँ, मेरे मन में कोई भी बात नहीं होगी, बताओ तो सही। मैं पिताजी के कहने से भरे समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ, अग्नि में जल सकता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी, मेरी माताजी मुझसे अप्रसन्न न हो। देखिए कितना बड़ा वैदिक मर्यादा का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। और वो कहते हैं, जल्दी बताओ क्या चाहते हो तुम, राज्यों यदभिकांक्षितम, मेरे पिता क्या चाहते हैं दशरथ जी, तो मैं उसको करूँगा, मैं निश्चित रूप से, डेफिनेटली आई विल डू इट, मैं करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। रामो द्विर्नाभिभाषते, श्रोताओ राम जो है, भगवान राम दो प्रकार की वाणी अपने जीवन में नहीं बोलते थे। जो उनके मुख से एक बार वचन निकल गया, उसका वो हमेशा पालन किया करते थे। इसीलिए तो हम उनको क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, ऐसा नाम देते हैं। कौन सी मर्यादा का पालन किया उन्होंने, आप देखिए ना, एक खुशी का समय होता राज्याभिषेक का, लेकिन अगले ही दिन सूचना मिली कि नहीं, अब तो वनवास होगा। तो भी दोनों स्थिति में कोई उनके मुखमंडल पर उदासीनता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अप्रसन्नता नहीं कि वो माता पिता से रुष्ट हो गए हों। आज के कोई हम लोग हो तो कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन वारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन देखो कितना आदर्श है। अनुव्रतः पितुः पुत्रः, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी,

जननी सकल संसार। अरे ऐसे बेटे बेटियां दुर्लभ हैं संसार में जो अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करते हो, अच्छी आज्ञाओं का पालन करते हो। हमारे यहाँ तो कहा जाता है यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। हमारे आचार्य हमारे बड़े लोग कहा करते थे, ए मेरे बेटे बेटियों अच्छे मेरे जीवन के आदर्श को स्वीकार करना, जो हमारे सुचरित्र हैं जो हमने अच्छा कुछ सीखा है उसी को तुम अपने जीवन में धारण करना। प्रिय श्रोताओ, भगवान राम के बारे में आप यदि देखेंगे तो कितना उन्होंने अपनी माता पिता का आज्ञाओं का पालन करना, इसलिए कभी माता पिता के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करो। मैं बच्चों से खास करके बात कहना चाहता हूँ, आप अपनी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति को देखो, कितना आदर्शमय जीवन था इनका। वो आदर्श राजा थे, आदर्श भाई के साथ भाइयों के साथ कितना प्यार करते थे अपने भाभियों के साथ, आदर्श राजा थे, आदर्श पति थे, आदर्श मैत्री उन्होंने रखी अपने से। सुग्रीव है, विभीषण है, हनुमान है, इन सबके साथ उन्होंने मित्रता रखी, समानता का व्यवहार किया उन्होंने। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि राम राज्य की कल्पना लोग किया करते थे। मैं तो समझता हूँ अथर्ववेद के इस मंत्र का उन्होंने बिल्कुल अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा था, क्योंकि वो वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे। अयोध्या के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दोनों टाइम यज्ञ न करता हो, सत्संग करते थे, वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। प्रिय श्रोता हो, और विशेष करके मैं पुत्र पुत्रियों से निवेदन करता हूँ, बच्चों यदि जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो अपने गुरुजनों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, और अपना आदर्श जो है महान पुरुषों को रखो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की मैंने घटना बताई, उन्होंने सबके साथ समानता का व्यवहार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस माता के कारण कैकेयी के कारण उनको वनवास हुआ तो भी उसके प्रति कोई उनको मनोमालिन्य नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। जैसी जन्मदात्री कौशल्या माँ, ऐसे ही वो भी उनकी माँ के समान रही। भरत को हमेशा कहते थे कि नहीं, संसार में माता कभी भी कुमाता नहीं होती, तुम माता को पूरी तरह से सम्मान करो। मातृदेवो भव की शिक्षा उन्होंने दी अपने भाइयों को, अपने भाभियों को। ये वैदिक आदर्श गृहस्थ जीवन का है। इसलिए मैं माता पिताओं से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपना व्रत संकल्प अच्छा रखो। आप जीवन के अंदर जितना अच्छा रहेंगे, आपके मन विचार कर्म, तो उतने ही आपके बच्चे भी आपके जीवन से कुछ कुछ प्रेरणाएं लेते रहेंगे। इसलिए वेद मंत्र कहता है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। प्यारे बच्चों, अपने माता को कभी दुख नहीं देना, अपनी माता को कभी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। उसने हमें जन्म दिया है और इतना कष्ट सहन किया है, तो माता का हमेशा सम्मान करना। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, कभी भी अपने माता पिता का अनादर मत करना। हमेशा तन से, मन से और धन से उनकी सेवा करते रहना। हम

नहीं। कितने ही जन्म जन्म हम ले लें तो भी हम माता पिता गुरुजनों के किए हुए असंख्य अनंत उपकारों को प्रिय बच्चों कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं खास करके इस मॉरिशस देश के सभी माता पिताओं से, उनके बच्चों से और छात्र छात्राओं से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, मैं आप सबसे साग्रह निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार को वैदिक आदर्शमय गृहस्थ जीवन अपना बनाओ। सोचो

0: हमें जीवन के अंदर कैसा करना है। सत्संग में जाओ, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो, और जो अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, तन से करो, मन से करो और धन से भी करो। यही तो हमारे पितर हैं, यही तो भगवान के समान है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म बहुत मुश्किल से मिलता है और ये मनुष्य जीवन भी बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए वैदिक गृहस्थ जीवन कैसा हो इस मंत्र के अंदर बहुत अच्छा आदर्श एक चित्रण खींचा है। मैं तो देखता हूँ हमारे महान पुरुषों का गृहस्थ जीवन कितना सुंदर रहा। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, योगेश्वर कृष्ण का भी जीवन ऐसा ही था। देखिए उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी तपस्या की, अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ, कहते हैं ना कि विवाह करने के बाद कितनी तपस्या की, वेद वेदांगों का अध्ययन किया, वैदिक संस्कृति के वो अनुयायी थे, दोनों समय अग्निहोत्र करते थे, संध्या करते थे, अपने माता पिता का पूरी तरह से सम्मान किया करते थे। उनके शत्रु दुर्योधन भी कहते हैं वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा। इसलिए प्रिय बच्चों आओ हम अपने माता पिता को बहुत अच्छी तरह से उनका सम्मान करें और इस मंत्र को अपने जीवन में चरितार्थ करें। भाई भाई से द्वेष न करें, बहन बहन से द्वेष न करें। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शम।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
2: इस समय सुबह के 6:18 हुए हैं।
3: NBC रेडियो 24 घंटे।
2: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये विज्ञप्तियां सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एमिताज के निवासियों को सूचित करता है कि मोसेलमा दुमा, मोसेलमा फाहिदन, बेलरीव रोड, अनवर कुबा रोड, तेरोज रोड और एमिताज रोड के एक भाग में तथा सैकोपर रोड में आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 से शाम के 5 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हाईलैंड्स के निवासियों को सूचित करता है कि मोसेलमा ओमनिकेन में आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 से दिन के 2 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे अपना इंतजाम कर लेने की मांग करती है। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय सुबह के 6:19 हुए हैं। चलिए कुछ भाव भरे गाने आपको सुनवाते हैं, कुछ मोटिवेशनल गाने आपको सुनवाते हैं। वैसे हम जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत ही कठिन रास्तों से गुजरते हैं। जीवन को हम एक गुरु मान सकते हैं क्योंकि जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कठिनाइयों से गुजरना, सही मार्ग का महत्व और संघर्षों से गुजर कर हर कार्य संपन्न करना, ये सब हम तो जीवन से ही सीखते हैं।

हमारे मन में आशाएं जरूर आया करती हैं। आशा भी बंधी रहती है हमारे हमारे मन में, और इसी आशा के सहारे हम आगे बढ़ पाते हैं। आशा और निराशा की इस दरिया में बहते हुए हम जीवन को सही मोड़ दे पाते हैं। निराशा आए तो आए, आप आशा की राह न छोड़िएगा।

रविवार 19 जुलाई 2026 फीफा विश्व कप के अंतिम पड़ाव के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में

0: में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। आज रात पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होंगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेले जाएंगे और इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें होंगी आमने सामने। स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल फोन का ध्यान भटकाना कम। सरकार ने एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगा दी गई है रोक। कल शनिवार 18 जुलाई से वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की एक टीम मॉरिशस में है। 21 जुलाई तक ये टीम गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट के लिए पहली बार 360 डिग्री की खास तस्वीरें और वीडियो लेने में काम करेगी। और विदेश में पश्चिम एशिया में 4 महीनों से ज्यादा समय से जारी भीषण संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। ऐसे में शनिवार को अमरीकी सेना ने बताया कि जोर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए उनके 2 और सैनिक मारे गए हैं। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फीफा विश्व कप 2026 की खबरों के साथ। शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। ये फिनिश सन 1966 के बाद से विश्व कप में इंग्लैंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, परंतु किलियन एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि फैसले का दिन आ गया है, जी हाँ, ये महामुकाबला जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार था आखिरकार आज होने जा रहा है। आज रात पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होंगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। मैच की शुरुआत मॉरिशस के समयानुसार 11 बजे होगी। इस ड्रीम फाइनल को लेकर मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह 7वें आसमान पर है। मैच शुरू होने में अब कुछ घंटे ही बाकी हैं, बचे हुए हैं। ऐसे में हमने मॉरिशस के लोगों का मूड जानने की कोशिश की। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए और मैच को लेकर अपनी प्रेडिक्शन भी साझा की। उन लोगों को सुनते हैं।
1: Pour ça, match Coupe du Monde entre Espagne et Argentine. Moi, c'est pour un match bien serré. Maintenant, vous avez un match d'après moi pour Rodriguez jouer Espagne. Moi, je crois prédiction pour finale là, DN Espagne gagné.
2: Ouais, fans Angleterre, mais malheureusement, mon équipe est éliminée par l'Argentine en semi-finale. Et pour la finale, moi, je supporte Espagne, mon content. Espagne gagne la Coupe du Monde par 2-1.
3: Moi, c'est tout match football, Coupe du Monde qui nous joue. C'est Argentine qui voulait sa coupe-là.
4: Et tout d'un moment, l'Angleterre, PSG, bien sûr, autour de la finale-là, 50-50%. C'est moi, un petit pourcentage pour l'Argentine, qui a gagné l'IN.
5: Depuis la Coupe du Monde, moi, c'est moi, c'est suivre tout match. Moi, je supporte l'Angleterre. Jusqu'à la semi-finale, et là, il est éliminé par DN. On est dans un match un peu difficile. Espagne, on est en Argentine. On va supporter l'Espagne. Il est capable de remporter par 1-0.
0: और यदि आप इस फाइनल का कोई भी पल मिस नहीं करना चाहते हैं तो MBC 11, MBC 7 और साथ ही MBC प्ले ऐप पर लाइव देख सकते हैं ये महामुकाबला। क्लब एम के पूर्व खिलाड़ी, कोच तथा फुटबॉल के सलाहकार सौजू गावसंकर ने भी इस फीफा विश्व कप के इस फाइनल मैच पर अपना विचार प्रकट किया। उनको सुनते हैं।
6: World Cup

0: 2026 के फाइनल अब चलाल बा। ये दुनिया के सबसे बड़ा दिन है। ये सिर्फ एक मैच नहीं हुई, ये इतिहास लिखे जाए। एक तरफ बा स्पेन, जवान खून, लाजवाब पासिंग, डिसिप्लिन और टीम वर्क की मिसाल, और दूसरा तरफ बा अर्जेंटीना, जोश, जुनून, अनुभव और दुनिया के सबसे बड़ा फुटबॉल विरासत के एक नाम लियोनेल मेसी। सबसे बड़ा जंग मिडफील्ड में हुई। जो टीम मिडफील्ड जीत जाए बहुत संभव बाकी वो मैच के भी कंट्रोल कर ले। भरोसा की सबके नजर रही लामिन यामाल पर, जवानी के चमक, और सबके आंख रही लियोनेल मेसी पर, उनका आखिरी वर्ल्ड कप हुई। हमारे हिसाब से फाइनल बहुत करीब हुई। हर बॉल के कीमत हुई, हर टैकल के मतलब हुई, हर पास के पीछे एक सपना हुई। और हो सकता बाकी चैंपियन के फैसला एक्स्ट्रा टाइम या पेनाल्टी तक पहुंच जाए। लेट्स लीव ए वेरी ब्यूटीफुल फाइनल एंड द बेस्ट टीम विन।
1: और आज मॉरिशस टापू, खासकर रात के समय कई जगहों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, फुटबॉल केंद्रों, घरों, यहां तक कि शादी के पंडालों और परिवारों के बीच फुटबॉल देखने का एक उत्साह छाया रहेगा। अर्जेंटीना और स्पेन के टी शर्ट पहनकर अलग अलग टीम फुटबॉल प्रेमी अपनी अपनी टीम का समर्थन करेंगे। समाचार विभाग की ओर से फुटबॉल प्रेमियों को विश्व कप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल का ध्यान भटकाना कम। जी हाँ, सरकार एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अब स्कूल के समय के दौरान छात्रों को अपने फोन बंद या फिर संभाल कर रखने होंगे, सिवाय कुछ खास जरूरतों की। कक्षा में ध्यान भटकने, ऑनलाइन बदमाशी यानी कि साइबर बुलिंग को रोकने और स्कूल के माहौल को बेहतर बनाने के वास्ते ये कदम उठाया गया। शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है स्कूलों में अनुशासन बढ़ाना और पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना। आशी बाचू की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का।
2: ध्यान भटकाने वाले मोबाइल फोन, साइबर बुलिंग की बढ़ती घटनाएं और छात्रों के बीच कमजोर पड़ते आपसी संबंध, शिक्षा मंत्रालय में ई एजुकेशन के सहायक निदेशक प्रीतम मोहित राम के अनुसार यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से सरकार ने स्कूलों में मोबाइल उपकरणों के इस्तेमाल को विनियमित करने का फैसला किया है। वे बताते हैं, मोबाइल फोन परिसर या कक्षा में वर्जित नहीं, हम इसका प्रयोग कम कर रहे हैं। छात्र पढ़ाई के वक्त वीडियोस करते हैं, सेल्फीज निकालते हैं। कुछ छात्रों को जब घर से मोबाइल नहीं मिलता तो वे उधार लेकर अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहते हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये नियम केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे स्कूल समुदाय, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी। इस पहल की सफलता काफी हद तक इन सभी पक्षों के बीच सहयोग और समन्वय पर निर्भर है। मंत्रालय संपर्क स्थापित करेगा ताकि सभी इस कदम को सही तरीके से अमल में ला पाएं, लेकिन कुछ एकाध बच्चे हैं जो विरोध करेंगे ही। इसके लिए साफ निर्देश हैं, माता पिता को जानकारी दें। स्कूल और माता पिता के बीच तालमेल सही हो तो हमारे पास एक अच्छा समाधान होगा। इस प्रतिबंध से आगे बढ़ते हुए शिक्षा मंत्रालय मॉरिशस के स्कूलों में एक नई संस्कृति विकसित करना चाहता है, जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हो, आपसी संवाद और सहयोग अधिक हो और छात्रों की सफलता के लिए अनुकूल शैक्षिक वातावरण तैयार किया जा सके। सरकार का उद्देश्य है इस कदम से छात्रों के दैनिक स्कूल जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कल शनिवार 18 जुलाई से वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की एक टीम मॉरिशस में है। 21 जुलाई तक ये टीम गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट के लिए पहली बार 360 डिग्री की खास तस्वीरें और वीडियो लेने का काम करेगी। इस काम के लिए अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस 4 गाड़ियां पूरे द्वीप में घूमेंगी। ये गाड़ियां यहां तक कि सरकारी सड़कों, मुख्य

0: पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक जगहों तथा अन्य खास ठिकानों की तस्वीरें कैमरे में कैद करेंगी। एक बार जब इन तस्वीरों को तैयार करके इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा तो दुनिया भर के लोग गूगल मैप्स और गूगल अर्थ के जरिए घर बैठे ही वर्चुअली मॉरिशस की सड़कों और खूबसूरती को देख सकेंगे। ये कदम देश के डिजिटल बदलाव और मॉरिशस के पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। MTPA के निदेशक बेनवा ऑतेया सोमवार को वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 टीम से मुलाकात करेंगे। राजमिला सीतामणि, याचना मिश्रा का विवरण।
1: मॉरिशस आने की तैयारी कर रहे पर्यटकों के लिए ये एक सहायक टूल होगा। हम एक एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं, उम्मीद है कुछ महीनों में हम इसे लॉन्च कर पाएंगे। पर्यटक और मॉरिशन भी जानकारियां हासिल कर पाएंगे। गूगल यू के जरिए अपडेट भी मिलेंगी।
0: सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज की मदद से ई पासपोर्ट के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत एक सलाहकार इस नई प्रणाली को लागू करने के वास्ते तकनीकी सहायता और क्वालिटी चेकिंग की सुविधा देगा। जैसा कि पिछले 19 जून के बजट भाषण में बताया गया था, सरकार सीमाओं के प्रबंधन के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य है सुरक्षा को और मजबूत करना और हवाई अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही प्रक्रिया को आसान बनाना। पुलिस विभाग में नियुक्त हुए 368 कर्मचारियों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। कल यानी कि शनिवार 18 जुलाई को वाकवा के फिलिप ओसान ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में उन कर्मचारियों ने आधिकारिक तौर पर इस पद की शपथ ली है। इनमें 116 महिलाएं और 252 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें 3 नवंबर 2025 को भर्ती किया गया था। इस शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने कानून का पालन करने, नागरिकों की रक्षा करने और जनता को सुरक्षा देने का दृढ़ संकल्प लिया है। अपने भाषण में पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजबाली ने कहा कि ये नए नियुक्त कर्मचारी पहले ऐसे बैच हैं कि हैं जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही पुलिस की अलग अलग खास टुकड़ियों में काम देखने का मौका मिला है। इनमें स्पेशल मोबाइल फोर्स, स्पेशल सपोर्ट यूनिट और नेशनल कोस्ट गार्ड शामिल हैं, जिससे वे पुलिस के अलग अलग कामों को अच्छे से समझ सके। पिछले कुछ समय से ये बात सुनने में आ रही है कि मॉरिशस में इस साल सर्दियां देरी से आई हैं। इसका मतलब यह है कि ये सीजन छोटा होगा परंतु ठंड ज्यादा पड़ेगी और इस सब के पीछे एल नीनो का प्रभाव है। ये धारणा लोगों के बीच काफी फैली हुई है, परंतु वाकवा के ऋतु विज्ञान केंद्र की डिविजनल मौसम पूर्वानुमानकर्ता संध्या दीनदयाल के अनुसार ये पूरी तरह से गलत है। शैली निर्बन की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सर्दियों की परिस्थितियां वास्तव में मई 2026 के अंत में ही शुरू हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस बार सर्दी का मौसम छोटा होगा। मौसम विभाग के प्रोविजनिस्ट के अनुसार फिलहाल ऐसा कहने के लिए कोई ठोस आधार नहीं, ये जानकारी संध्या दीनदयाल ने दी। इसीलिए इस समय किसी असमान या सर्दी की स्थिति दर्ज नहीं की गई है। वे बताती हैं, मई की शुरुआत में तापमान ज्यादा रहा, लेकिन अंत तक आते आते तापमान सामान्य रहा या उससे कम। एंटीसाइक्लोन के समय कम तापमान दर्ज होता है। ट्रांजिशन के दौरान सर्दी गर्मी दोनों का तापमान दर्ज होना आम बात है। जहाँ तक पिछले कुछ हफ्तों में महसूस की गई ठंड की बात है, तो ये किसी असाधारण रूप से कड़ाके की ठंड का संकेत नहीं है। इस मौसम में अब तक सबसे कम तापमान वाकवा में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान अभी भी मॉरिशस के सबसे कम दर्ज किए गए रिकॉर्ड से काफी ऊपर हैं, जो 20 जुलाई 1986 को बेलरीव में 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

लिए यहाँ भी सामान्य से अधिक सर्दी होने का निष्कर्ष निकालने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। जब एंटीसाइक्लोन मास्कारीन्स के दक्षिण में होते हैं तो ठंडी हवाएं बहती हैं, तापमान कम होता है, रात को जब आसमान साफ रहता है और हल्की हवा बहती है, खासकर दक्षिण की ओर।

0: में तापमान की तुलना में वर्षा पर अधिक पड़ता है। दूसरे शब्दों में ये मौसमी घटना न तो सर्दी के कथित रूप से देरी से शुरू होने का कारण है और न ही इस मौसम में महसूस की गई ठंड की घटनाओं को इससे जोड़ा जा सकता है।
1: कुछ बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के पीछे अक्सर ऐसे कारण होते हैं जिन्हें पहचानना और उनका समाधान करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जहां एक तरफ सरकार इन बच्चों के लिए एक विशेष संरचना स्थापित एक विशेष ढांचा स्थापित करने की योजना बना रही है, वहीं इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए एक अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों के मूल्यांकन पर आधारित हो। इसमें प्रत्येक बच्चे की संचार संबंधी कठिनाइयां या अन्य कारक भी शामिल हैं और इस इन समस्याओं को झेलने के लिए सत्यवानी वीरा बुद्रेन इन बच्चों के साथ काम करती हैं। हमारी सहयोगी अंजलि फुलंचल ने उनसे बात की है। विवरण याचना मिश्रा।
2: À peu près 10% des cas rapportés à mon bureau concernent des enfants qui ont des troubles.
0: मेरे दफ्तर में दर्ज 10% मामलों का संबंध उन बच्चों से है जिनके बर्ताव में समस्या है। हिंसा, मौखिक या शारीरिक हिंसा, धमकी, भावनात्मक या मानसिक परेशानी, ये वे बच्चे हैं जो उन परिवारों से आते हैं जहां आर्थिक समस्या है, विघटन है, हिंसा है, तनाव है। भावनात्मक मार्गदर्शन का अभाव या तनाव इन बच्चों को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड संस्था बहुत जरूरी है जहां इन बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।
2: कॉम्पोर्टमेंट डिफिसिल एट नेसेसेयर अफिन डू ऑफरी अन एनकैड्रमेंट स्पेशलाइजे एट अन एनवायरनमेंट सिक्योरिजे।
1: विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पश्चिम एशिया में 4 महीनों से ज्यादा समय से जारी भीषण संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। ऐसे में अब शनिवार को अमेरिकी सेना ने बताया कि जोर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए उनके 2 और सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही इस लड़ाई में अब तक जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या 16 हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इस ताज़ा हमले के बाद से एक अमेरिकी सैनिक अभी भी लापता है। दक्षिणी नॉर्वे में शुक्रवार को लगी भीषण आग में 100 से अधिक घर जलकर खाक हो गए और सैकड़ों लोगों को इलाका छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। पुलिस ने बताया कि आग शुक्रवार दोपहर को करीब 6:30 स्थानीय समय ड्रामन शहर में एक टाउन हाउस में लगी थी। इसके बाद आग पूरे इलाके और पास के जंगलों में फैल गई। आग बुझाने वाले कर्मचारी शनिवार सुबह भी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय ऊंचे इलाके पर हल्की सी बारिश होगी। दोपहर को सेंट्रल प्लेटो पर बादलों के घेराव के साथ वर्षा हो सकेगी। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर बरसात होगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगुनों के उस पार, अतः दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय लगभग 7:45 बजे जबकि सूर्यास्त 5:48 पर।

चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया, जबकि

कि किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। आज रात पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यूजर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें होंगी आमने सामने। स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल का ध्यान भटकाना कम। सरकार ने एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगा दी गई है रोक। कल शनिवार 18 जुलाई से वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की एक टीम मॉरिशस में है। 21 जुलाई तक ये टीम गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट के लिए पहली बार 360 डिग्री की खास तस्वीरें और वीडियो लेने का काम करेगी। और विदेश में पश्चिम एशिया में 4 महीनों से ज्यादा समय से जारी भीषण संघर्ष और ज्यादा भयावह। ऐसे में शनिवार को अमरीकी सेना ने बताया कि जोर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए उनके 2 और सैनिक मारे गए हैं। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम अपर्णा और कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आइए शुक समाचार सुनते हैं। रेलवे रोड काउची मिलिटिया में, रेलवे रोड काउची मिलिटिया में 55 साल के शिव विक्रम सिंह राम दिकल, श्री विक्रम सिंह राम दिकल जिन्हें सब लोग रोशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर रेलवे रोड काउची मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडी मास के श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM काशीनाथ रोड पुजदी फ्लैक में 51 साल के श्री किशन बलरूप जिन्हें सब लोग किशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती बलरूप किरण काजल के घर काशीनाथ रोड पुजदी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेवोंचुए की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM मूसलमान दिलिस विल्नुआ मेबर्ग में 75 ईयर्स ओल्ड की जनाब अब्दुल मुनाफ स्काली जिन्हें सब लोग भाई मुनाफ के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उन्हीं के मकान मुसलमान दिलिसा विल्नुआ मेबर्ग से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए ए और हेमा मस्जिद विल्नुआ ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस क्रिवेडिक्रियोला का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 11:30 AM प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासी थ्रियोली में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री राजनंद रामलोगन श्री

अजनन रामलोगन, जिन्हें सब लोग राजन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री विषय रामलोगन के घर प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा का से त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तियामिनी त्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। नंबर 212 गिरोजमा गली रोजिल में, नंबर 212 गिरोजमा गली रोजिल में 49 साल के 49 years old के श्री गणेश सुरजोनुवा, जिन्हें सब लोग विनेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके पिताजी श्री महावीर सुरजोनुवा के घर नंबर 212 गिरोजमो गली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पार माँ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 PM। जीना गली स्टैनले में 81 साल की 81 years old की जनाब शेख इदरीस शाह लाल मोहम्मद, जिन्हें सब लोग इदरीस लाल मोहम्मद के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उनके भांजे जनाब शेख अबू अंजारी लाल मोहम्मद के मकान जीना गली स्टैनले से निकाल कर दफनाने के लिए सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। कुंजन गली कांटोरेल में 91 साल की 91 years old की श्रीमती पद्भावती कुंजन, पैदाशी नाम मिहिदीन, और जिन्हें सब लोग सबित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के बारह बजे उनके बेटे श्री प्रदीप कुंजन के घर कुंजन गली कांटोरेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांटोरेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:00 PM। और डॉल्फिन लेन शाटो बेनारेस में 80 साल के 80 years old के श्री धर्मदत्त कुचिक, जिन्हें सब लोग दागाम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले मंगलवार 21 जुलाई को दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री उमेश कोचिक के घर डॉल्फिन लेन शाटो बेनारेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रैंड बॉय की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 21 जुलाई एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 7:01 और 10 सेकंड हुए हैं।
2: स्पोर्ट्स न्यूज।
1: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। फीफा विश्व कप 2026 का ऑल टाइम क्लासिक, दो क्लासिक टीमों के बीच जो बड़े ही रोमांचक तरीके से संपन्न हुआ। बात कर रहे हैं सेमीफाइनल की, लेकिन जिसने फाइनल का रंग दिखाया, इंग्लैंड 6 फ्रांस

4 कमाल का स्कोर, यमाल का कमाल आज रात देख पाएंगे या नहीं, लेकिन कल कमाल के गोल स्कोर किए गए। इंग्लैंड ने 6 गोल दागे पहली बार वर्ल्ड कप में और फ्रांस को 4 गोल कंसीड करने पड़े। एक समय फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड 4-0 से आगे। सो कमाल के मैच, डिक्लान राइस ने खाता खोला खेल के 3rd मिनट पर ही। एनजी कोंसा का भी एक गोल 18वें पर। फिर बैक टू बैक बुकायो साका ने 3 गोल स्कोर किए फर्स्ट हाफ में, 2 गोल 37वें, 37th और 45वें 45th मिनट पर। यानी इंग्लैंड ने 4-0 से आगे फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में मैदान पर लौटते ही फ्रांस की टीम संभल गई और मैच डोमिनेट करने लगी और एक के बाद एक उन्होंने गोल दागने शुरू किए। किलियान एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए 48वें 48 और 66वें 66 मिनट पर, एम्बापे के 2 गोल। ब्रैडली बाकुला ने 54वें पर दूसरा गोल स्कोर किया। यहां तक 3 गोल वापस कर लिए इंग्लैंड ने और जाकर एम्बापे ने एक और गोल स्कोर किया और उस्मान डेम्बेले ने इंजुरी टाइम में खेल के 96-96 मिनट पर चौथा गोल स्कोर किया। यहां तक मैच 5-4 के स्कोर पर था, लेकिन जूड बेलिंगम ने 2 मिनट बाद 98 मिनट पर एक और गोल स्कोर करके इंग्लैंड को 6-4 से जितवा दिया। डिक्लान राइस, एरिक कोंसा, बुकायो साका का एक शानदार हैट्रिक, 87वें 87th पर एक पेनाल्टी भी, जूड बेलिंगम का आखिरी गोल, आखिरी कील। सो बुकायो साका ने 3 गोल स्कोर कर वो केवल इंग्लैंड का दूसरा खिलाड़ी बना है जिसने एक वर्ल्ड कप में एक हैट्रिक मारी है। बुकायो साका को हार्दिक बधाई। डिक्लान राइस ने पहला गोल स्कोर किया, एनजी कोंसा, फिर जूड बेलिंगम ने इस टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल स्कोर करके वो इंग्लैंड का पहला खिलाड़ी बन गया जो एक ही एडिशन में इतने सारे गोल उसने स्कोर किए। अंततः फ्रांस 4 इंग्लैंड 6, हार्दिक बधाई। क्लासिकों का क्लासिक कह सकते हैं इन दो महान फुटबॉल राष्ट्रों के बीच। ओवर टू यू मेसी, कहना चाहता है किलियान एम्बापे जो कल रात और 2 गोल दागकर वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर बन गया है, यानी 10 गोल और मेसी से 2 गोल आगे। कुल मिलाकर वर्ल्ड कप में 22 गोलों के साथ एम्बापे ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन गया है और वो केवल 27 साल का है, यानी कम से कम एक और वर्ल्ड कप या 2 वर्ल्ड कप उसके सामने है। हार्दिक बधाई किलियान एम्बापे को। ओवर टू यू लियोनेल मेसी, आज रात गोल्डन बूट जीतने के लिए कम से कम 2 गोल बनाने होंगे लियोनेल मेसी को, वो भी स्पेन के विरुद्ध। समस्या गंभीर है पर हौसला बुलंद है। सो आज रात 11 बजे फाइनल मुकाबला होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में अपने तेज, खूबसूरत और आक्रामक खेल से विरोधियों को चौंकाया है। हर पास, हर मूव और हर प्रहार उनके आत्मविश्वास की कहानी कहता है। तो दूसरी ओर अर्जेंटीना ने साबित कर दिया है कि बड़े मैचों का दबाव उसे और मजबूत बना देता है। ये टीम आखिरी सीटी बजने तक हार मानना जानती ही नहीं, किंतु आज न आंकड़े मायने रखेंगे न पिछली जीतें, मैदान पर सिर्फ साहस, जुनून और 90 मिनट का जादू चलेगा। एक गलती सपना तोड़ सकती है, जबकि एक गोल पूरी पीढ़ी की यादों में अमर हो जाएगा। आज सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती जाएगी बल्कि इतिहास लिखा जाएगा, दुनिया की सांसें थम जाएंगी, न्यूजर्सी का मेटलाइफ स्टेडियम गूंजेगा और करोड़ों फुटबॉल प्रेमी उसी एक पल का इंतजार करेंगे जब फुटबॉल का नया बादशाह, नया सम्राट अपना नया ताज पहनकर दुनिया के सामने खड़ा होगा। अर्जेंटीना या स्पेन, देखते रहिए और सुनते रहिए लाइव MBC 11 और MBC प्ले पर आज रात 11 बजे विश्व कप का आखिरी मुकाबला, आखिरी मैच, महाफाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। और इतना सब कुछ होने के बाद ट्रांसफर बाजार में अभी भी खिलाड़ियों का आना जाना जारी है। चेल्सी ने कल मौके का फायदा उठाकर एस्टन विला के मोगन रोजर्स के साथ एक समझौता तय कर लिया है, एक रिकॉर्ड
फी 117 मिलियन पाउंड पर इंग्लैंड

का ये मिडफील्डर मोगन रोजर्स चेल्सी में जाने के लिए राजी हो गया है। केवल 23 साल का है और वो एक 6 साल के कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर भी करेगा। अपना मेडिकल कल पूरा करने जा रहा है। सो वर्ल्ड कप में सबको हार्दिक बधाई। आज आखिरी मैच होगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना रात 11 बजे। क्रिकेट में भारत का मुकाबला आज लॉर्ड स्टेडियम में इंग्लैंड से होगा। दूसरा वनडे है, पहले में उसकी हार हुई, सो आज देखेंगे दूसरे में क्या होगा, दूसरे वनडे मुकाबले में। और जहां तक फॉर्मूला वन मोटो रेसिंग चैम्पियनशिप का सवाल है, तो आज बेल्जियम ग्रैंड प्री के लिए किमी एंटोनेली जो अभी पोल पोजीशन पर है, अभी पहले स्थान पर है, वो आज कितने या फिर जीत पाएगा या नहीं। जॉर्ज रसेल ने कल जब बेल्जियन ग्रैंड प्री में क्वालिफाइंग के लिए जब हुआ तो सब ने कोशिशें की और इस तरह कल किमी एंटोनेली की जीत हुई और वो आज शुरू करेगा पहले स्थान से। मैक्स वेस्टापेन दूसरे स्थान पर आया जबकि जॉर्ज रसेल केवल चौथे स्थान पर। फिलहाल जनरल स्टैंडिंग में किमी एंटोनेली पहले स्थान पर है, उसके पास है 179 पॉइंट्स। तो दूसरे स्थान पर है जॉर्ज रसेल 154 के साथ। उससे तीसरे स्थान पर है लेविस हैमिल्टन 147 अंकों के साथ। सो भूलेगा नहीं, आज रात 11 बजे स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप का ग्रैंड फिनाले। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: नाडेस रोड हाइलैंड्स फिनिक्स के हाइलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर द्वारा रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे यज्ञ का आयोजन किया गया है। लाफलोगा के श्री सूर्य मंदिर पुरुषोत्तमा क्षेत्र द्वारा रात यात्रा निकाली जाएगी। स्थान है रविवार 19 जुलाई सुबह 9 बजे से रात के 7:30 बजे तक श्री गयनाथ मंदिर बोनाकई, श्री शिव मंदिर लालमाची, श्री गजाधर मंदिर क्वात्रे सोर।
2: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
3: इस समय 7:09 हुए हैं। कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से सुनिएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्लैनवेट के निवासियों को सूचित करता है कि कनाल बॉटस, कारिकाल, टर्टल आई दो गलियों के एक भाग में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी बेज टोम्बो के निवासियों को सूचित करता है कि मोसिलमों कुप्रिम, मोसिलमों कोकोद, मोसिलमों अल्ला कुशेल रेजिडेंस फ्लोरिडा लैंड सेटलमेंट सेंट जोसेफ रोड और लाहौद कोटिया के एक भाग में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी कनाल दायू के रहने वालों को सूचित करता है कि रू अल्फोंस रोलांडो, डॉक्टर हेनरी पेरो और बैटरी गलियों तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2:30 बजे तक यानी कि 2:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी इन सभी निवासियों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से चंद विज्ञप्तियाँ। इस समय सुबह के 7:11 हुए हैं।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
2: डोंट मिस इट।
3: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
4: तो सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। 7:13 हुए हैं, रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों का मनोरंजन तो तय है। चलिए आप लोगों के नाम करते हैं हम जीना सिर्फ मेरे लिए का ये गाना, आप गुनगुनाइएगा। सुबह की ये बेला है, गुनगुनाते हुए जो शुरू करेंगे अपने सुबह को तो आपकी सुबह बहुत ही सुरीली रहेगी। एक सुरीली सुबह आपके लिए, ऐसी हम सुरेखा आपके लिए दुआएँ करते हैं।

0: 24 hours a day.
1: तो चलिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कुछ और विज्ञप्तियां हम आपके लिए पढ़ते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोबासैन के निवासियों को सूचित करता है कि अवेन्यू डॉक्टर लेजियो, अवेन्यू कुदाबकस, अवेन्यू राउल फिलिप, अवेन्यू मुदाव, रेजिडेंस विलमे, एनएचडीसी विलमे, डॉक्टर रेड, अवेन्यू महादेव बिल्टू, अवेन्यू दुपेरे, अवेन्यू शातोनेफ और आसपास के इलाकों में आज रविवार 19 जुलाई को मरम्मत कार्यों की वजह से सुबह 8:15 से 9:15 तक, फिर दोबारा दिन के 2:00 से 2:45 तक यानी कि 3:15 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में एक कटौती लाई जाएगी। और फिर ड्रीम प्राइस बोबासैन के निवासी, ड्रीम प्राइस बोबासैन के आसपास के निवासियों को भी सूचित करता है सीबी कि आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:15 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इधर ओकुले के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि लाहुत कोचिया के एक भाग में जनरल दे गोल, मोसेये लीन, नोत्र दाम दे लोरेट, रामफल, सामुएल फुक्रो, लाबूडोने, एलियास कुआ, लावेंडर हिल, इन गलियों में तथा आसपास के गलियों में आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 से दिन के 4:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। कैथोबोन के निवासियों को सूचित करता है सीबी की रॉयल रोड के एक भाग में बेलरोज, दिकैं और आसपास के इलाकों में आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 9:00 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और कैथोबोन के ही निवासियों को सूचित करता है सीबी की एवेन्यू विल्सन, एवेन्यू बोसेजू के एक भाग में कोलविल, लाफाए, पुआव्र, ला पेरूस और आसपास के इलाकों में आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी सैंपिया के निवासियों को सूचित करता है

0: Qui Petit Verger, Boischery Road, Rivière Baptiste, Le Pouce Road, School Lane और Saint-Pierre गांव के आसपास के इलाकों में Saint-Pierre गांव के एक भाग में और Église de Saint-Pierre के इलाकों में आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। कोरोमंडल के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसेलमा एमिताज एवेन्यू पानोरामा एवेन्यू जुपिटर एवेन्यू प्लूटो एवेन्यू सैटर्न एवेन्यू मर्स एवेन्यू कोल्फिन और एवेन्यू काबोश में कल सोमवार 20 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे। इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही इन सभी इलाकों में बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। इस समय 7:23 हुए हैं। चलिए सुनते हैं आज का मंगल विचार कार्यक्रम।
1: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए। मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। मनुष्य के मन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। छोटी सोच से बचना और विचारों में उदारता लाना आवश्यक है। हम अपनी प्रार्थना में कहते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरा मन शिव संकल्प वाला बने। एक लड़का आम तोड़ने की कोशिश में रास्ते के किनारे पाए जाने वाले आम के पेड़ पर पत्थर चला रहा था। उसी समय एक राजा अपने दो सिपाहियों के साथ रास्ते से गुजर रहा था। लड़के ने आम के पेड़ पर जो पत्थर चलाया, वह पेड़ की डाली से टकरा कर राजा के सिर पर जा गिरा। सिपाहियों ने लड़के को तुरंत पकड़ लिया और राजा से कहा, हे राजन, इस लड़के ने पेड़ पर जो पत्थर चलाया, वही आपके सिर पर लगा। इस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। राजा ने लड़के को गौर से देखा, फिर आम के पेड़ को देखा। कुछ सोचने के बाद राजा ने कहा, भले ही पेड़ को चोट लगती है, परंतु पत्थर चलाने वाले को वह मीठा फल देता है। क्या मैं एक पेड़ से गया गुजरा हूँ कि पत्थर लगने पर भी मैं फल न देकर सजा दूँ? मुझे तो पेड़ से बेहतर बनना है, इसीलिए मेरी ओर से इस लड़के को टोकरी भरकर मीठे फल दो। पेड़ की उदारता से प्रेरित होकर राजा ने अपनी सोच में उदारता लाने का प्रयत्न किया। श्रोताओं, उदारता की सीख हम प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। सूरज कहता है, मैं ऊपर आकाश में हूँ, नीचे धरती पर रहने वाले प्राणी आकाश पर चढ़कर मेरी किरणों को छू नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं अपनी किरणों को नीचे धरती तक पहुंचा देता हूँ, ताकि मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त हो। नदी कहती है, मेरा जन्म पहाड़ों की ऊंचाई पर होता है। अगर मैं पहाड़ पर ही रह जाऊं, तो मेरा जल पाने के लिए मनुष्य को कष्ट उठाना पड़ेगा। पहाड़ों से बहकर मैं नीचे धरती पर आ जाती हूँ, ताकि मेरा जल मनुष्य को आसानी से मिल जाए। वृक्ष कहता है, मेरी ऊंची

0: डालियों पर फल लगे होते हैं, परंतु फल पाने के लिए इतनी ऊंचाई पर पहुंचना मनुष्य के लिए कठिन है। इसीलिए मैं फल से भरे अपनी डालियों को नीचे झुका देता हूँ, ताकि मनुष्य को आसानी से फल प्राप्त हो। श्रोताओं, यदि मनुष्य प्रकृति से नहीं सीखेगा तो अपने विचारों में उदारता कैसे ला पाएगा? दुनिया में अनेक रूपों से उदारता की कमी दिखाई देती है। एक यात्री ने प्लेन में प्रवेश किया। उसने देखा कि प्लेन में उसकी सीट की बगल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दोनों हाथ नहीं थे। यात्री ने एयर होस्टेस से कहा, मैं एक अपाहिज के पास बैठना पसंद नहीं करूंगा, आप मुझे दूसरी सीट दीजिए। यात्री दूसरी सीट के लिए जिद करता रहा। इस समस्या को सुलझाने के लिए एयर होस्टेस ने यात्री से कहा, पूरे प्लेन में एक ही सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है, अर्थात फर्स्ट क्लास में है। पहली बार के लिए हमने प्लेन के किसी यात्री को इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में ले जाने का विचार किया है। इतना कहकर एयर होस्टेस ने अपाहिज व्यक्ति से विनम्रता से कहा, सर, हम चाहते हैं कि आपके साथ उदारता का व्यवहार किया जाए, इसीलिए आप हमारे साथ फर्स्ट क्लास में आ जाएं। यह कहकर एयर होस्टेस बड़ी उदारता के साथ अपाहिज व्यक्ति को फर्स्ट क्लास में ले गई। जिस यात्री ने अपाहिज के प्रति सज्जनता नहीं दिखाई थी, वह शर्म से सिर झुकाकर अपनी सीट पर बैठ गया। श्रोताओं, जो उदार नहीं होता है उसे शर्मिंदगी ही मिलती है। हम संकल्प करें कि अपने विचारों में उदारता लाकर अपने मन मस्तिष्क को संवारेंगे, अपने दिल को बड़ा बनाएंगे और अपनी सज्जनता का प्रमाण देंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

सुबह के 7:30 बजे हैं और ये है आप लोगों का प्रोग्राम सुबह का नजराना। सुबह का नजराना प्रोग्राम में आप लोगों का हम सुरेखा स्वागत करते हैं, आपका साथ है 9 बजे तक। बस हमारे श्रोताओं के एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला है। ये गाना आप सुनिएगा, गुलाम मूवी से लिया गया।

0: झलकियां झलकियां।
1: तो ये रेडियो मॉरिशस है, रेडियो मॉरिशस पर कौन कौन से प्रोग्राम आपके लिए रखे गए हैं चलिए जरा देखते हैं। अभी तो हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए आज का सुबह का नजराना शो, और ऐसे में हमारा आपका साथ 8 बजे तक है इन प्यारे प्यारे गानों के साथ और कुछ आइटम्स के साथ। फिर 8 बजे आप समाचार सुन पाएंगे भोजपुरी में, उसके बाद पैगाम आपके नाम आप लोगों के लिए पेश करेंगे हम, जिसमें आप अपने अपनों के नाम मैसेजेस भेज सकते हैं। और 9 बजे संक्षिप्त समाचार होंगे, उसके बाद आप सुनिएगा आज का मंगलाचरण कार्यक्रम। आज मंगलाचरण स्पेशली आधारित रहेगा श्रावण मास के अवसर पर आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा द्वारा, और इसे पेश करेंगी नीतू शाह। फिर 10 बजे आप सुनिएगा आज का समाचार, आज के संक्षिप्त समाचार, उसके बाद उर्दू प्रोग्राम होगा निसार की प्रस्तुति में। फिर 11 बजे संक्षिप्त समाचारों के बाद तमिल प्रोग्राम आप सुनिएगा सुंदरम से। राजेंद्र पेश करेंगे आज का तेलुगु प्रोग्राम, और तेलुगु प्रोग्राम 12 बजे से 1 बजे तक चलेगा। फिर मराठी प्रोग्राम चलेगा दिन के 1 बजे से 2 बजे तक, जिसे शिरीष पेश करेंगे। और चाइनीज़ प्रोग्राम जिन लेकर आएंगे 2 से 3:30 बजे तक, और 3:30 बजे आप रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में सुनिएगा। रत्ना से पूजा लेकर आएंगे आपके लिए 4 से 5 बजे तक हम और आप कार्यक्रम, और 5 से 6 बजे तक तो हर पसंद प्रोग्राम। 6 बजे होगा समाचार बुलेटिन, और उसके बाद आप सुनिएगा आज का चाइनीज़ प्रोग्राम हॉन्ग हॉन्ग की प्रस्तुति में। फिर पुवाना लेकर आएंगी आज का प्रोग्राम तमिल भाषा में 7 बजे। 7:30 बजे आप तेलुगु प्रोग्राम सुनिएगा वंदना से। गीत गंगा आज का मराठी प्रोग्राम शिरीष लेकर आएंगे 7:50 पर, और 8:10 पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम रोशनी की प्रस्तुति में होगा। समीर लेकर आएंगे आज का महफिल शब उर्दू कार्यक्रम, और ये प्रोग्राम आप 8:40 पर सुन पाएंगे। 9 बजे आज का भोजपुरी तड़का प्रोग्राम होगा उषा की प्रस्तुति में, और पुराने गानों का प्रोग्राम सुनहरे पल गिनीशा पेश करेंगी 11:00 से 12:00 तक। तो ये था एक छोटा सा डिटेल हमारे रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों के बारे में, और ऐसे में साथ तो देते रहिएगा, आपके एंटरटेनमेंट का बड़ा प्यारा सा सिलसिला है ये। चलिए ज़रा हम क्या यही प्यार है मूवी का गाना सुनते हैं, और करके देखिए प्यार ज़रा दीवाने की तरह। ये दीवाना यही दावा करता है कि उसकी तरह प्यार करने वाले हमेशा अपने साथी को सबसे बड़ी खुशी दे जाएंगे।

0: एनबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: हमने तुझ पे बहुत भरोसा किया, 20 दिन के लिए हमने तेरे लक पर इन्वेस्ट किया, आज तुझ पे बहुत पैसे लगे हुए हैं और तू जाना चाहता है।
2: मैं जाना चाहता हूँ।
3: अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है, तुझे यह लाया कौन? तेरा लक। और तुझे भेजेगा कौन? तेरा लक। अब तुझे तेरे लक से ही तेरे पासपोर्ट को जीतना होगा।
0: रविवार 19 जुलाई को एनबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म लक, 2009 की मूवी हिंदी फीचर फिल्म लक। तस्वीरें देखी एनबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: मैं किसी और आदमी के साथ कुछ नहीं करने वाला, सैम को पहले ही कह चुका हूँ, अब तुम भी सुन लो।
5: कुणाल प्लीज डोंट डू दिस मी राइट नाउ। मेरा बॉस कभी भी आता होगा, सैम ने मुझे प्रॉमिस किया था।
4: मैंने प्रॉमिस नहीं किया था ना?
5: तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, जब एम यहाँ आएगा यू हैड बेटर बी रेडी।
0: रविवार 19 जुलाई को एनबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म दोस्ताना, रोमांटिक कॉमेडी मूवी जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन पर फिल्माई गई दोस्ताना।

चलिए जरा हम प्यार के गुस्से के बारे में सुनते हैं। वही प्यार जहाँ पर गुस्सा होता है, वो गुस्सा बड़ा प्यारा सा होता है। प्यार में गुस्सा करना बड़ा प्यारा प्यारा सा फीलिंग होता है। चलिए जरा उन्हें मनाने की कोशिश देखते हैं हम। अमित

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: अब चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं, एक सीख देने वाली कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा था, तभी वह अचानक रुक गया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि इतने विशालकाय, इतने युच्च जीवों को

उनके आगे के पैर में बंधी केवल एक छोटी सी रस्सी से रोका गया था। कोई जंजीर नहीं, कोई पिंजरा नहीं, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि हाथी किसी भी समय अपनी इस रस्सी को तोड़कर भाग सकते थे, लेकिन किसी कारण से वे ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास ही खड़े एक ट्रेनर्स को देखा और उनसे पूछा, ये जानवर बस यूं ही क्यों खड़े हैं, ऐसे ही क्यों खड़े हैं और भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्रेनर ने समझाया, जब वे छोटे थे और कमज़ोर होते थे तो हम इन्हें बांधने के लिए ऐसी ही रस्सी का इस्तेमाल करते थे और इस उम्र में यह उन्हें बांधे रखने में काफ़ी हुआ करता था। वे भी कमज़ोर थे, रस्सी भी कमज़ोर थी, तो रस्सी उन्हें बांधने में सफल रहती थी। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे यह मानने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, वे मानने के लिए कंडीशन्ड हो जाते हैं कि वे इसे तोड़ नहीं सकते हैं। उन्हें लगता है कि रस्सी अभी भी उन्हें बांध कर रख सकती है, इसलिए वे कभी आज़ाद होने की कोशिश ही नहीं करते। आदमी हैरान था, ये जानवर किसी भी समय अपनी रस्सियों को तोड़कर भाग सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें लगता था कि वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वे वहीं फंसे रह गए, वहीं के वहीं खड़े रह गए। इन हाथियों की तरह हम में भी कितने लोग ऐसे हैं जो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अतीत में एक बार इसमें असफल हो चुके हैं। असफलता सीखने का ही एक हिस्सा है। हमें जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार असफल हुए ये मतलब नहीं होता कि हर बार असफल होंगे। हर बार ट्राई करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए, हमें इच्छा होनी चाहिए, वरना हम भी हाथियों की तरह एक छोटी सी रस्सी से बंधे खड़े रह जाएंगे, प्रगति की राह पर नहीं चल पाएंगे। चलिए इस कहानी के बाद आपको बप्पी लहरी की आवाज़ सुनवाते हैं और ये गाना आप सुनना बहुत पसंद करेंगे। अपने ज़माने का एकदम से मशहूर सा गाना था और इसी गाने के साथ हमारा आपका साथ थोड़ी देर के लिए रुकेगा। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुनिएगा अभी से, फिर उसके बाद मिलते हैं हम, लेकर आएंगे आपके लिए पैगाम आपके नाम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घरी मिला ले जा इ बखत फजीर के 8 बजलबा। सब कोई के नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। काल सामदी के मायामी में खेलल गल एगो रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरल तीसरका स्थान के विश्व कप 2026 प्लेऑफ मुकाबला में इंग्लैंड ने फ्रांस के 6-4 से हरा दिलक। इस फिनिश सन 1966 के बाद से विश्व कप में इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहल। तो दूसर देने में किलियान एम्बापे इंग्लैंड के खिलाफ तीसरका स्थान के ई मैच में फ्रांस खातिर 2 गोल करके विश्व अपन विश्व कप कैरियर में सबसे जस्ती गोल करे के मामले में लियोनेल मेसी के पाछे छोड़ दिलक और कुल 22 मने 1-2 गोल ले पहुँच गल। फैसला के ई दिन आगल बाते ई महा मुकाबला जेकर सबसे बेसब्री से इंतजार रहल। आखिरकार ओ दिन आगल बाते। जी हाँ, आज रात भरती दुनिया के नज़र अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकल रही, जहाँ फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल मैच खेलल जाए। एक खिताबी मुकाबला में स्पेन और अर्जेंटीना की टीम आमने सामने रही। मैच के समयानुसार 11 बजे

0: होई और ई ड्रीम फाइनल के लेके मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रेमी के उत्साह सातवां आसमान पर रही। ये फाइनल एमबीसी 11, एमबीसी 7 और एमबीसी प्ले ऐप पर एकर सीधा प्रसारण होई। स्कूल में अब पढ़ाई पर जस्ती ध्यान होई और मोबाइल के ध्यान भटकावे के कमती रही। सरकार एगो नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू करलन, जेकर तहत स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा देवल गल। अब स्कूल के बखत के दौरान छात्र अपन फोन बंद या फिर संभाल करके रखे के चाहिए। कक्षा में ध्यान भटकावे ऑनलाइन बदमाशी माने साइबर बुलिंग के रोके के और स्कूल के माहौल के आर जस्ती बेहतर बनावे खातिर ई कदम उठावल गल। शिक्षा मंत्रालय के उद्देश्य है स्कूल में अनुशासन बढ़ावे के और पढ़ाई खातिर एगो निमन माहौल तैयार करे के। दूसर देश में जे हाँ पश्चिम एशिया में 4 महीना से जस्ती जारी भीषण संघर्ष दिन ब दिन आर जस्ती भयावह होते जाता। ऐसन देने में सामदी के अमरीकी सेना ई बतैलन कि जॉर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमला के मुकाबला करके उनकर 2 और सैनिक मारल गल। एकर संगे संगे ई लड़ाई में अबले जान गवाए होला अमरीकी सैनिक के कुल संख्या 16 हो गल बाती। तैकरवे संगे हमने के भोजपुरी समाचार समाभल। ध्यान देवे खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

आवा मरनी की खबर सुन जा रेलवे रोड कौची मिली थी हमें, रेलवे रोड कौची मिली थी हमें दुकोरी 15 बरिस के सेकंड सैकों के श्री विक्रम सिंह राम दिकल, श्री विक्रम सिंह राम दिकल जिनकरा सब लोग रोशन के नाम से जैसी जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बाती, उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरवे से माने कि रेलवे गली कौची मिली ते से उठा के क्रियाक्रम खातिर में जिन कौंडे मास की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM काशीनाथ गली पुस्ती फ्लैक में, काशीनाथ गली पुस्ती फ्लैक में दुकोरी 11 बरिस के 51 के श्री किशन बोलरूप जिनकरा सब लोग किशन के नाम से जस्ती जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बाती, उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती बोलरूप किरण काजल के घरे काशीनाथ गली पुजदी फ्लाक से उठा के क्रियाक्रम खातिर फ्लावों की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM मोसलमो डेलिस विलनुआ मेबर्ग में 3 crore 15 lakh के 75 के जनाब अब्दुल मुनाफ स्काली जिनकरा सब लोग भाई मुनाफ के नाम से जस्सी जाना थलन जा, उ गुजर गल हवन, उनकर जनाजा आज दिन के 11 बज के आधा उनकर मकान से माने मुसलमो दिलिस विलनो मेबर्ग से निकाल के सबसे पहले नमाज जनाजे खातिर विलनुआ के ए रहामा मस्जिद ले जावल जाए, फिर दफनाए खातिर पॉइंट ब्रोकुस रिवे दे क्रेल का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 11:30 AM प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासे ट्रियोले में 3 crore 14 lakh के 74 के श्री राजनन रामलोगन जिनकरा सब लोग राजन के नाम से जस्सी जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बाते, उनकर माटी आज दिन के एक बज के आधा उनकर बेटा श्री विषय रामलोगन के घरे प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा का से थ्रियोले से उठा के क्रियाक्रम खातिर तेमिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 12:01 PM नंबर 212

0: गिरोजमा गली रोजिल में नंबर 212 गिरोजमा गली रोजिल में दो कोरी नौ बरिस के 49 ans के श्री गणेश सुरजनुआ श्री गणेश सुरजनुआ जिनका सब लोग विनेश के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनका मृत्यु हो गल बातें उनका माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनका पिताजी श्री महावीर सुरजनुआ के घरे गिरोजमा गली रोजिल से उठा के क्रियाक्रम खातिर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट नून। जीना गली स्टैनले में 4 कोरी 1 बरिस के 81 ओं के जनाब शेख इद्रिस शाह लाल महमेद जनाब शेख इद्रिस शाह लाल महमेद जिनका सब लोग इद्रिस लाल महमेद के नाम से जसी जाना थलंजा उ गुजर गल होवन उनका जनाजा आज दिन के एक बज के आधा उनका भांजा जनाब शेख अबू अंजारी लाल महमेद के मकान जीना गली स्टैनले से निकाल कर दफनाए खातिर सैमौता का कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट 1 PM। कुंजन रोड कौंतुगल में 4 कोरी 11 बरिस की 91 ओं की श्रीमती पद्भावती कुंजन पैदाशी नाम मेहदीदीन और जिनके रास सब लोग साबित के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बाती उनकर माटी आज दिन के बारह बजे उनकर बेटा श्री प्रदीप कुंजन के मकान कुंजन रोड कौतुगल से उठा के क्रियाक्रम खातिर कौतुगल की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट नून। जिल्फा लेन सेंट जूलियन दुतमा में जिल्फा लेन सेंट जूलियन दुतमा में 3 कोरी 11 बरिस के 71 ओं के श्रीमती लक्ष्मी बलक पैदाशी नाम मंगल और जिनके रास सब लोग रानी बलक के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आज सांझ के 3 बजे उनकर बेटा श्री किरण कुमार बालक के घरे जिल्वा लेन सेंट जूलियन दुतमा से उठा के क्रियाकरण खातिर मेजिन कौंडे मास की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और डोल्फिन रेन शातो बेनारेस में 4 कोरी के बरिस के उमिर के 80 ओं के श्री धर्मदत्त कुचिका जिनका सब लोग दागाम के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आवत मंगर के 21 जुलाई के दिन के 11 बजे उनकर बेटा श्री उमेश कुचिक के घरे डोल्फिन लेन शातो बेनारेस से उठा के क्रियाक्रम खातिर गांववा के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन ऑन ट्यूजडे 21 जुलाई एट 11 AM। तो जितना जन परिवार दुख में हवन जा दुख के ई बखत में MBC के बगल से सब कोई के हमनी सहानुभूति प्रकट करत है सर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे।

0: रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: 819 किलो हर्ट्ज पर रेडियो मॉरिशस।

आप लोगों का हम स्वागत करते हैं हमारे इस शो में, आपके इस शो में, पैगाम आपके नाम। पैगाम तो आप लोगों के नाम होगा, सो ये शो आप लोगों के नाम करते हैं हम। इस समय 8:13 हुए हैं और हमारा साथ होगा 9 बजे तक। 9 बजे तक पैगाम आपके नाम प्रोग्राम में आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं 5251705 पर, और कॉल करना चाहते हैं तो 4028085 पर कॉल कर सकते हैं और अपने अपनों के नाम मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी इवेंट हो उनके जीवन में, या कोई बर्थडे हो, या कोई शादी हो, या कोई भी शादी की सालगिरह हो आपके परिवार में, आपके दोस्तों के बीच में, या फिर कोई अलग सा इवेंट हो आपके दोस्तों परिवारों के बीच में, आप ज़रूर हमारे साथ बांटिएगा ताकि हम आपके अपनों तक आपके मैसेजेस पहुँचा सकते हैं। हमारा साथ तो सुबह से दे रहे हैं हमारे कई श्रोता, जिनमें है माला सुमाहू जी, सूरज शर्मा सजादा जी, और हमारे दोस्तों में शामिल सुनीता जी भी हैं दागोचिया से, मौदालपिया से अनीता जी हैं, तो विश्वानी जी, विश्वानी दुमन जी वाकवा से हैं। इन सब का साथ मिल रहा है हमें सुबह से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ज़रा हम आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जिसमें तस्वीर तो नज़र आ जाती है और ये तस्वीर हमारे दिल में बस जाती है। चलिए इस गाने के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ना शुरू करेंगे।

सो पैगामों का ये सिलसिला है, पैगाम आपके नाम 8:19 हुए हैं। हमारे साथ साथ हैं बौद्धालबिया से अनीता जी और कविता जी, दागुचिया से सुनीता जी और बिहारी परिवार मिलकर हमारा साथ दे रहे हैं और मिलकर माता विद्यावंती जी को एक शुभ दिन विश कर रहे हैं। हमारे साथ देवी जी बहुत ही सुबह से हैं क्योंकि उन्होंने हमारी कहानी का भी जिक्र किया, इससे पता चलता है देवी जी आपने हमारा प्रोग्राम बड़ी बड़ी सुबह से सुना हुआ है। तो चलिए ज़रा हम सुदेवी जी का भी मैसेज पढ़ते हैं। वागवा से सुदेवी जी का कहना है कि 15 जुलाई को मालिका की बेटी दिया ने अपना जन्मदिन मनाया और उन्हें विश कर रहे हैं मम्मा माया, पापा जैनन, बहन रिया, शेष्टा, दादी पुष्पा, चाचा, चाची, कजिन। और 16th को लालोगा की उनकी सहेली यानी कि देवी जी की सहेली जयश्री ने अपना जन्मदिन मनाया और विश कर रहे हैं भैया गौतम, भाभी प्रिया, बहन अंबिका, पद्मिनी, सभी नीसेस एंड उनके पूरे परिवार, राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार, कुवाहू, बिट्टू, बिकाही परिवार, सभी मिलकर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बोथ।

और इधन आकाश चेतन मनसुख जी भी हमारा साथ दे रहे हैं बॉम्बू से, और उन्होंने सभी को मंगल कामनाएं भेजी हैं इस संडे की। उन्होंने अपनी मामा प्रीति, पापा क्रिश, बोफ सिस्टर्स उर्वशी एंड विश्नी, जीजू विनेश, नेफ्यू केहान और पूरे मनसुख परिवार के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं भेजी हैं। हैप्पी संडे, हैप्पी फन डे, लवली डे का ये मैसेज उनके नाम।

पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में करते हैं स्वागत आपका। इस समय 8:27 हुए हैं और हम शादी की बधाइयाँ देते हैं विशान और दिया जी को। दिया जी जो अमोगी रहती हैं उन

की शादी हो रही है कौतुगल के विशान जी के साथ, और शादी के इस पवित्र बंधन में बंधकर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां रहे, ऐसी दुआ पूरे परिवार की है। निकलते हुए सूरज की शांत रोशनी की तरह रोशन हो जीवन आपका, खिलते हुए फूलों की खुशबुओं की तरह खुशियों से खुशबुदार जीवन मिले आपको, ऐसी दुआ हमारी पूरी टीम की है आपके लिए और आपके पूरे परिवार की है आपके लिए। आपकी मामा माया, पापा जयंत और बहन तानिया की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं आपकी शादी के लिए विशान और दिया जी।

तो चलिए हम आशा जानू जी का मैसेज पढ़ते हैं। पढ़ाई से मिला एक छोटा सा ब्रेक, छुट्टियां मंगलमय सभी छात्रों को आशा जानू जी की तरफ से। आशा जानू जी ने कॉटेज से सभी छात्रों को मंगल कामनाएं भेजी हैं। हम तो सभी टीचर्स को भी मंगल कामनाएं भेजते हैं। चलिए आशा जानू जी की तरफ से सभी छात्रों और टीचर्स को बहुत बहुत मंगल कामनाएं उनकी छुट्टियों के लिए। आशा जानू जी सभी बच्चों को और सभी टीचर्स को शुभकामनाएं हॉलीडेज की दे रही हैं अपनी मम्मा कुमारी की तरफ से और प्यारे से ऋषभ को तथा सभी बच्चों को बहुत प्यार दे रही हैं। तो आशा जानू जी की तरफ से, मम्मा कुमारी की तरफ से, ऋषभ की मौसी आशा की तरफ से, भाई शुभम की तरफ से, मम्मा आरती की तरफ से और पापा राज तथा पूरे जानू परिवार की तरफ से ऋषभ को मंगल कामनाएं। बेटा खूब इस वकेशन में नई चीज़ें सीखो, कहानियों की किताबें पढ़ो, पढ़ने के मज़े लो, ढेर सारी यादें बनाओ, परिवारों के साथ मेल जोल बढ़ाओ, खेलो कूदो घूमो और मज़े करो।

इस वक्त हमारा साथ, इस वक्त कहाँ, बड़ी सुबह से हमारा साथ है फ्लिक कॉम्प्लेक्स से अनीता जी दे रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। और आज बर्थडे है चाची सुनीता जी का, मोतायोगो की चाची सुनीता जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, वेरी हैप्पी बर्थडे विश मिला है मीरा, सानिया, जिहान और सैलेश की तरफ से, उनकी प्यारी सी बेटी माधवी की तरफ से, जय और रुचिता की तरफ से, रितेश, रेशमी और उनके हस्बैंड देश मिलकर चाची सुनीता को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुनीता जी, आप ख्वाहिशें ज़रूर कीजिएगा, ख्वाहिशें आप खुल के रखिए, तमन्नाएं आप जो चाहे कीजिए, क्योंकि आपकी इन ख्वाहिशों की पूर्ति हो, आपकी ये तमन्नाएं पूरी हो, ऐसी दुआ करने वाला आपका पूरा परिवार है, हमारी पूरी टीम है। आपको जन्मदिन की मंगल कामनाएं।

ये है आप लोगों का प्रोग्राम, आप ही लोगों का प्रोग्राम, आप ही लोगों के संदेश है और आप ही लोगों के लिए प्यार और दुआएं। चलिए जरा हम रोजिल के दान और अक्षी की शादी की सालगिरह के अवसर पर उनको मंगल कामनाएं देते हैं उनके पूरे परिवार की तरफ से, मामा पापा की तरफ से, बहन कजिन्स भाभियों की तरफ से, जीजू की तरफ से और बौसा मौसी की तरफ से, मामू मामी की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। दान और अक्षी को जीवन की बगिया हरी रहे, यूं ही जीवन में खुशियां भरी रहे, यूं ही ये जोड़ी एक मिसाल है, सालों तक एक दूजे की नज़दीकियाँ बनी रहे, यूं ही यही दुआ पूरे परिवार की है आपके लिए।

तो चलिए ज़रा हम फातिमा जी को थैंक यू कहते हैं। न्यू ग्रोव की फातिमा जी हमें सुन रही हैं और बहुत सारी मंगल कामनाएं दी हैं हमको भी, हमारे श्रोताओं को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए फातिमा। और फातिमा जी का कहना है कि नाजिमा चेरी जी का बर्थडे है आज और उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां फातिमा जी की तरफ से। और नाजिमा चेरी जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं न्यू ग्रोव के उनके बेटे फरदीन की तरफ से। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से।

प्रेमिला जी ने हमें फ़ोन किया कौंदमास से। उनका कहना है कि उनके दामाद अविनाश और अविनाश जी के बेटे आयांश दोनों का है बर्थडे साथ साथ। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू पापा और बेटे। सो अविनाश जी को और आयांश जी को रक्षा की तरफ से, यानी कि अविनाश जी की पत्नी रक्षा की तरफ से और आयांश की मामा रक्षा की तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएँ। प्यारी गुड़िया आहाना की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे दशरथ परिवार की तरफ से सैंपिया के और कौंदमास के सिगुलाम परिवार की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। और प्रेमिला जी अपने दामाद अविनाश और नाती आयांश को बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत सारी दुआएं दे रही हैं। कहना है उनका कि बस यही दुआ है कि उनका जीवन हमेशा सफल रहे, बहुत प्यार रहे उनके बीच में। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी वेरी हैप्पी बर्थडे टू बोथ पापा और बेटा।

तो पापा और बेटे के इस गाने के साथ साथ समाप्त हो जाएगा हमारा आपका पैगाम आपके नाम कार्यक्रम। बस यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, आप लोगों के जीवन में प्रगति प्रगति रहे। इस गाने के साथ जो हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, 9 बजे आप सुनिएगा संस्कृत समाचार, उसके बाद आज का मंगल आचरण कार्यक्रम सुनिएगा नीतुषा की प्रस्तुति में। हमारी आपकी अगली मुलाकात तक हम सुरेखा आपसे आज्ञा चाहेंगे, शुभ दिन शुभ संडे और इंजॉय करते रहिएगा हर पल हर घड़ी, और हम सभी छात्रों को सभी टीचर्स को हैप्पी हॉलीडेज कहेंगे। अगली बार मिलते हैं, शुभ दिन, नमस्कार।

0: Very good morning, everyone. Check your time. सुबह के ठीक 9 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ. आपको नमस्कार. अभी
1: नमस्कार. हंसीनी श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया. ये फिनिश सन 1966 के बाद से विश्व कप में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. पहले हाफ में डिक्लान राइस और एज़री कुंजा ने गोल किए, जिसके बाद बुकायो साका ने तेजी से 2 गोल दागे और मैच खत्म होने से 3 मिनट पहले पेनाल्टी स्पॉट में से अपना गोल पूरा करते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की. हाफ टाइम के बाद खेल दोबारा शुरू होने पर फ्रांस ने वापसी की. किलियान एम्बापे के 2 गोलों ने उन्हें इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बना दिया, जबकि ब्रैडली बकुला ने एक और गोल करके इसको को 4-3 कर लिया. हालांकि इसके बाद फ्रांस ने एक पेनाल्टी दे दी, जिसे साका ने गोल में बदल दिया. किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके अपने विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछा छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए. फैसले का दिन आ गया है, वह महामुकाबला जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था. आखिरकार आज होने जा रहा है. आज पूरी रात पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यूजर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी. मैच की शुरुआत मॉरिशस के समयानुसार 11 बजे होगी. इस ड्रीम फाइनल को लेकर मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह 7वें स्थान पर है. यदि आप इस फाइनल को का कोई भी पल मिस नहीं करना चाहते हैं तो एमबीसी

0: 11, NBC 7 और साथ ही NBC Play ऐप पर लाइव देख सकते हैं। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस विभाग में नियुक्त हुए नए 368 कर्मचारियों ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। कल यानी कि शनिवार 18 जुलाई को वाकवा के फिलिप ओसान ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में उन कर्मचारियों ने आधुनिक आधिकारिक तौर पर पद की शपथ ली। इनमें 116 महिलाएं और 252 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें 3 नवंबर 2025 को भर्ती किया गया था। इस शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने कानून का पालन करने, नागरिकों की रक्षा करने और जनता को सुरक्षा देने का दृढ़ संकल्प लिया। अपने भाषण में पुलिस कमिश्नर रामपोसा सुगजबाली ने कहा कि ये नए नियुक्त कर्मचारी पहले ऐसे बैच के हैं जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान पुलिस की अलग अलग खास टुकड़ियों में काम देखने का मौका मिला। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि दक्षिणी नॉर्वे में शुक्रवार को लगी भीषण आग में 100 से अधिक घर जलकर खाक हो गए और सैकड़ों लोगों को इलाका छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। पुलिस ने बताया कि आग शुक्रवार दोपहर करीब 3:25 ड्रामेन शहर के एक टाउन हाउस में लगी थी। इसके बाद आग पूरे इलाके और पास के जंगलों में फैल गई। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: रेलवे रोड कौचिमिलिटिया में 55 साल के 55 के श्री विक्रम सिंह रामदिकल, जिन्हें सब लोग रोशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर रेलवे रोड कौचिमिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन काउंडे मास्का की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टूडे एट 11 AM। रॉबिन्सन रोड क्यूपिप में 87 साल की 87 की श्रीमती धनमती राम चरिता, जिन्हें सब लोग सुशील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11:15 उनके बेटे श्री मोनो विक्रम रामचरिता के घर रॉबिन्सन रोड क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:15 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
2: रेडियो मॉरिशस।

मंगलाचरण, प्रणाम श्रोताओं। मंगलाचरण कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन है। अगले 30 जुलाई से श्रावण मास आरंभ होने वाला है। इसे सावन का पावन महीना माना जाता है। इसी संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की प्रस्तुति में आज का यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है। स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर आचार्य सुनील और आचार्य सूरज प्रकाश खेदू शास्त्री जी। आचार्यगण सादर नमन। तो आए कार्यक्रम का शुभ आरंभ मंत्र पाठ से करते हैं।

0: मंत्र पाठ के पश्चात श्रोताओं, अब डॉक्टर आचार्य सुनील से संध्योपासना और स्वाध्याय के विषय में जानेंगे।
1: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और साथ ही साथ श्रीमती नीतुषा जी का भी हार्दिक अभिनंदन। तो आज का हमारा जो मुख्य विषय है, खास करके मंगलाचरण कार्यक्रम में, वह है संध्योपासना और स्वाध्याय का महत्व। सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुसार ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या और स्वाध्याय करने का विधान प्राचीन काल से लेकर के अब तक विद्यमान है। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ का पहला स्थान है। ब्रह्म यज्ञ में परमात्मा की स्तुति और उपासना करने का विधान है, साथ ही साथ स्वाध्याय करने का भी विधान है। इसी को संध्योपासना कहते हैं। सम्यक्तया ध्यायति संध्यायति इति संध्या, पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करना संध्या कहलाती है। संध्योपासना संधि बेला में करनी चाहिए। रात और दिन अथवा दिन और रात के मिलने का नाम संधि है। यह प्रकाश और अंधकार का संयोग है। न दिन हो न रात का समय हो, इसी समय को सुबह और शाम कहते हैं। उसी समय जो ईश्वर की उपासना की जाए वही संध्योपासना कहलाती है। मनु महाराज ने दो संध्याओं का उल्लेख किया है, प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। एक श्लोक के माध्यम से महर्षि मनु जी इस प्रकार कह रहे हैं कि पूर्वा संध्या जपस्तिष्ठेत सावित्रीम अर्क दर्शनात् पश्चिमां तु समा सीनः सम्यक रीक्ष्वभि भावनात्। प्रातः काल की संध्या में गायत्री को व सावित्री मंत्र को जपता हुआ सूर्य दर्शन होने तक स्थित रहें और सायंकाल की संध्या में तारों के चमकने तक बैठा हुआ ठीक ठीक जप करें।

सुबह के समय गायत्री का जप तब तक करते रहें जब तक सूर्य देव का दर्शन न हो जाए। शाम के समय संध्योपासना के अंतर्गत व्यक्ति को तब तक बैठकर शांतिपूर्वक गायत्री जप करना चाहिए जब तक कि आकाश में तारे स्पष्ट रूप से दिखाई न दें। पंच महायज्ञ विधि के प्रकरण में महर्षि दयानंद का कथन है, रात और दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। रात और दिन की संधि बेला आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत होता है। संध्या वंदना करने से पहले महर्षि दयानंद ने शुद्धि की ओर ध्यान दिलाया है। शुद्धि का अर्थ है पवित्र होना। उन्होंने दो प्रकार की शुद्धि का उल्लेख किया है, पहले बाह्य शुद्धि और दूसरा आंतरिक शुद्धि या अंदर की शुद्धि। जल आदि से शरीर की शुद्धि होती है और राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुणों के त्याग से एवं सत्य और ज्ञान के ग्रहण करने से भीतर की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए क्योंकि यही सर्वोत्तम और परमेश्वर प्राप्ति का एक साधन है। सुबह और शाम मन को ईश्वर की ओर प्रेरित करने का समय है। प्रातःकाल दिन शुरू होने से पहले तथा सायंकाल दिन समाप्त होने से पहले परमात्मा का ध्यान करना हर मनुष्य का धर्म है। मनु महाराज ने लिखा है, ऋषयो दीर्घ संध्यात्वाद दीर्घम आयुर आपनयोः प्रजाम यशश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसम एव च। अर्थात सब स्त्री पुरुष को शांत भाव से एकाग्रचित हो प्रातः और सायंकाल की संध्या को करते रहें, क्योंकि प्राचीन वैदिक ऋषियों ने निरंतर लंबे समय तक संध्योपासना के द्वारा ही दीर्घायु यश कीर्ति और ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। भक्ति में लीन होने के लिए संध्योपासना करना आवश्यक बताया गया है। नित्य स्वाध्याय तथा संध्योपासना द्वारा ज्ञान की वृद्धि और आत्मा की उन्नति होती है। ब्रह्मोपासक मनुष्य ही संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। संध्योपासना भक्ति रूपी बीज है। इस भक्ति रूपी बीज को बोने से अध्यात्म रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। अध्यात्म रूपी वृक्ष का अमृत फल मोक्ष है। संध्योपासना शरीर मन बुद्धि और आत्मा को पवित्र बनाने का साधन है। संध्योपासना करने से पहले शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर की शुद्धि जल से होती है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन की शुद्धि सत्य के पालन से होती है। महर्षि मनु ने पवित्रता को सर्वोपरि स्थान दिया है। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। पवित्रता के अभाव में हमारी संध्या वंदना धारणा ध्यान ठीक से नहीं हो पाते। मन चंचल हो जाता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती। शारीरिक शुद्धि के लिए स्नान एक नित्य कर्म है। जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है और मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। संध्योपासना करते रहने से मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है। ध्यान और मंत्रोच्चारण से मन शांत हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। हम अधिक से अधिक कार्य पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं। संध्योपासना करते रहने से आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है। इससे ओज बल और तेजस्विता बढ़ती है। एक दृष्टांत के अनुसार औरव ऋषि राजा सगर से कहते हैं कि हे राजन, बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सायंकाल

काल के समय और प्रातः काल तारागण के चमकते हुए ही भली भांति आचमन आदि क्रिया करके विधिपूर्वक संध्योपासना करें। कोई भी बाधा हो तो भी प्रतिदिन ही संध्योपासना करनी चाहिए। आपत्तिकाल अर्थात रोग व बीमारी की अवस्था को छोड़कर जो कोई भी व्यक्ति सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोता है वह दोष और प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे राजन, गृहस्थ स्त्री पुरुष सूर्योदय से पहले उठकर प्रातःकालीन संध्या करें और सायंकाल में भी संध्योपासना करें, उस समय सोना नहीं चाहिए। नहीं आलस्य प्रमाद करना चाहिए, अन्यथा शरीर मन बुद्धि और आत्मा की शक्ति घट जाती है। इसके पश्चात स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ता है, मन तमोगुण से युक्त हो जाता है। संध्योपासना करने से मन और आत्मा में दिव्य गुण और दिव्य शक्ति प्रवेश करती है। पूर्व की ओर मुख करके संध्या व ध्यान करना चाहिए। विष्णु पुराण के तृतीय अंश में यह उल्लेख है, संध्योपासना से ओज बल आयु आरोग्य धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। सत्य सनातन वैदिक धर्म में कर्म कांड और नित्य कर्म में संध्योपासना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनि संध्योपासना संधि बेला में अवश्य करते थे और अन्यों को भी करने के लिए प्रेरणा देते थे। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत एवं प्रभुराम योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु विरजानंद महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि सभी महापुरुषों ने संध्योपासना को महत्वपूर्ण स्थान दिया। संध्या कब करना चाहिए? क्यों आवश्यक है संध्या उपासना करना? क्या मिलता है संध्या करने से? संध्या नित्य प्रति करनी चाहिए, यह शास्त्र सम्मत विधान है। नित्य नियम पूर्वक संध्या करने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धीरे धीरे एकाग्रता में वृद्धि होती है। संध्या करते समय मन की एकाग्रता आवश्यक है। संध्या करने से प्रकाश स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति आस्था श्रद्धा भक्ति और अपनापन उत्पन्न होता है। संध्या करने से उत्तम प्रेरणा जागृत होती है जो जीव को प्रतिपल सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। संध्या करने से अंतःकरण के जन्म जन्मों के कुसंस्कार जलने लगते हैं व समाप्त होकर वे सब विकार समाप्त होने लगते हैं। नित्य प्रति संध्या करने से मुख पर अनुपम तेज आभा और गंभीरता आ जाती है। नित्य प्रति संध्या करने से वाणी में मधुरता कोमलता और सत्यता का वास होता है। नित्य प्रति संध्या करने से मन में पवित्र भावनाएं उच्च विचार एवं सबके प्रति सद्भाव प्रेम आदि सात्विक गुणों की वृद्धि होती है। नित्य प्रति संध्योपासना करने से संकल्प शक्ति सुदृढ़ होकर मन की आंतरिक शक्ति को ईश्वर की ओर केंद्रित कर देती है। संध्योपासना करने से हृदय में अहिंसा शांति संतोष क्षमा दया प्रेम आदि सद्गुणों का उदय होता है और हिंसा लोभ क्रूरता अभिमान आदि दुर्गुणों का नाश होता है। संध्योपासना करने से प्राप्त आध्यात्मिक बल के कारण संसार के प्रति दीनता नहीं रहती और परमात्मा की कृपा से बल प्राप्त होने से व्यक्ति का अहंकार भी नष्ट हो जाता है। संध्या करते समय जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हृदय में जो रस की धारा प्रवाहित होती है उसे हृदय तो पान करती ही है, प्रायः सभी इंद्रियां तन्मय होकर शांति लाभ भी प्राप्त करती हैं। संध्या करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संध्या के समय
किए गए आचमन, अंग स्पर्श, प्राणायाम, अघमर्शन।

0: मनसा परिक्रमा, गायत्री पाठ, समर्पण और नमस्कार मंत्र महाऔषधि के समान शरीर और मन को स्वस्थ बनाते हैं। संध्योपासना से आत्मा की उन्नति होती है, क्योंकि यह आत्मा का भोजन है। संध्योपासना के पश्चात स्वाध्याय करने का विधान है। स्वाध्याय का अर्थ है पढ़ना, पढ़कर विचार करना, पढ़कर जानना, समझना। स्वाध्याय के दो अंग हैं। प्रथम अंग अध्ययन, अर्थात आत्मनिर्माण की रुचि जागने वाली उत्तम पुस्तकों का नियमित अध्ययन, नियमित रूप से पढ़ना। दूसरा अंग है स्व अध्ययन, अर्थात अपना निरीक्षण करना, अपनी कमियों दोषों को देखना, कमियों और दोषों को दूर करने का सतत चिंतन करना, साथ ही साथ अपने गुणों की वृद्धि के लिए आत्मचिंतन करना। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं पढ़ना और स्वयं पढ़कर समझना और अन्यों को समझाना। अपने आप का निरीक्षण करना भी स्वाध्याय कहलाता है। इसका अभिप्राय यह है कि अपने आप का अध्ययन करना और ज्ञानवर्धक ग्रंथों को पढ़ना और समझाना। यह मानसिक शांति, बौद्धिक विकास और चरित्र निर्माण का एक अत्यंत सशक्त माध्यम है। नियमित रूप से सत्य एवं अच्छी बातों को सुनने, पढ़ने और समझने से अज्ञान और ब्रह्म दूर होते हैं, जीवन में सकारात्मकता आती है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। तैतिरीय आरण्यक में उल्लेख है स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम, अर्थात हे मनुष्य, पढ़ने में प्रमाद न करें, आलस्य से रहित होकर अध्ययन करें। स्वाध्याय और प्रवचन करने में कभी जी न चुराएं। पढ़ने पढ़ाने में आलस्य प्रमाद सबसे बड़ा बाधक तत्व है। स्वाध्याय से बुद्धि तेज हो जाती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए अपने अध्ययन, आत्मचिंतन और कर्तव्यों के पालन में कभी लापरवाही या आलस्य न करें। स्वयं पढ़ने और दूसरों को सिखाने या विद्या का प्रचार प्रसार करने व प्रवचन करने में कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। अच्छी पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और आत्म मंथन करने से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है। स्वाध्याय के प्रमुख लाभ, पहला लाभ है ज्ञान की वृद्धि। अच्छे साहित्य और शास्त्रों का व धर्म ग्रंथों के अध्ययन से हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, जिससे सही और गलत में भेद करने की क्षमता विकसित होती है और विवेक जागृत हो जाता है। स्वाध्याय का दूसरा लाभ है आत्मचिंतन और स्वयं का सुधार। स्वाध्याय हमें अपने भीतर झांकने और अपनी कमियों व गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का अवसर देता है। स्वाध्याय का तीसरा लाभ है मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। स्वाध्याय मन को शांत करता है और अकेलेपन के क्षणों में सच्चे मित्र की भांति हमारा मार्गदर्शन करता है, जिससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं। स्वाध्याय का चौथा लाभ है चरित्र निर्माण। वेद, ऋषि महर्षि के ग्रंथों, महापुरुषों की जीवनी और प्रेरक पुस्तकों को पढ़ने और समझने से उत्तम संस्कारों का विकास होता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार और आचरण में सुधार आता है। स्वाध्याय का पांचवा लाभ है सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वाध्याय जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की किरण दिखाता है और चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। अतः स्वाध्याय और संध्योपासना से आत्मा का कल्याण, मानसिक शांति, सद्बुद्धि की प्राप्ति और व्यवहार में सुधार होता है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सुनील। तो श्रोताओ, जप, तप और संध्योपासना, इनको आध्यात्मिक शुद्धि और मानसिक शांति का मुख्य आधार माना गया है। ये अभ्यास साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं, आंतरिक शक्ति का संचार करते हैं

इस सुंदर भजन के बाद श्रोताओं, चलिए मंगलाचरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, श्रावण मास में श्रावणी पर्व मनाया जाता है। इसे देवाध्ययन पर्व भी कहा जाता है। वैदिक परंपरा का पालन करते हुए इस माह को ज्ञान, यज्ञ, धर्म

0: वेद के प्रचार के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब जिस ग्रंथ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, सनातन धर्म के सबसे प्राचीन, पवित्र और सर्वोत्तम ग्रंथ माने जाते हैं, यानी कि वेद। तो आचार्य सूरज प्रकाश खेदू शास्त्री जी, कृपया बताने की चेष्टा करें कि वेद शब्द का अर्थ क्या है।
1: जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते और नितुषा जी आपका भी विशेष धन्यवाद। और देखिए, श्रावणी मास वेद प्रचार का मास है और निश्चित रूप से इसमें वेदों का प्रचार किया जाता है। वेद शब्द का साधारण अर्थ होता है ज्ञान, जिसको हम नॉलेज कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द को चार धातुओं से सिद्ध किया जा सकता है। पहला है विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विचारणे तथा विद्रय लाभे। तो पहला जो धातु है उसका अर्थ बता रहे हैं कि विद ज्ञाने, जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसको वेद कहा गया है। हमारा धर्म क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, तो ये अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, भौतिक एवं लौकिक जो ज्ञान है हमें वेद से प्राप्त होता है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। दूसरा अर्थ बताया गया सत्तायाम, सत्ता। सत्ता का अर्थ होता है अस्तित्व, यथार्थ या होने का भाव। तो जिसके द्वारा ब्रह्म व धर्म के गुण रहस्यों को यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो, उसको हम वेद कहते हैं। अर्थात इसमें जितने भी पदार्थ हैं सबके अस्तित्व के बारे में दर्शाया गया है। और आगे विद विचारणे, जिसमें इसका अर्थ हुआ विचार करना, अर्थात वेद हमें ब्रह्म, धर्म, क्रिया आदि का विचार जिसमें किया जाता हो, उसको वेद कहा गया है। और निश्चित रूप से इसके बाद जब हम सभी प्रकार के इन विषयों को जान लेते हैं तो हमें लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए वेद शब्द का अंतिम अर्थ बताया गया लाभ। हम अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान के स्वामी बन जाते हैं और इस प्रकार हम अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त करते हैं। तो वेद का अर्थ यहाँ पर अत्यंत विस्तृत है और वेद के माध्यम से हम अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त करते हैं। अर्थात वेद स्वाध्याय, वेद का ज्ञान प्राप्त करके हम वेद से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये मुख्य रूप से वेद के चार अर्थ बताए गए हैं। और अन्यत्र भी कहा गया है विद्यते ज्ञायते नेनेति वेदः, जिसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त किया जाए वही वेद है। तो निश्चित रूप से वेद ज्ञान का भंडार है और इसी श्रावणी मास के अंतर्गत हम वेद को सभी ओर उसका प्रचार करते हैं और सभी लोगों को वेद जानने का प्रयास करते हैं कि सभी लोग वेद जानें और वेद का स्वाध्याय कर पाएं। और वेद का अर्थ अभी हमने बताया, जैसे आपने हम लोगों से पूछा कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और निश्चित रूप से ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है।
0: तो वेद की रचना कैसे हुई आचार्य जी?
1: देखिए, हमारे ऋषियों ने और वेदों में भी यह दर्शाया गया है, यह भी मैंने बताया कि वेद परमात्मा द्वारा रचित हैं। परमात्मा स्वयंभू हैं और सामवेद का एक सुंदर मंत्र बतला रहा है कि जज्ञानो वाचम इष्यति पवमान विधर्मणि क्रंदम देवो नः सूर्यः। जिस प्रकार प्रातः काल में सूर्य प्रकाशित होता है, चहुं ओर फैल जाता है, उसी प्रकार परम दयालु सबका हित करने वाला ईश्वर सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेद उपदेश करके उनकी वाणी से प्रेरित करता है। अर्थात परमात्मा तो निराकार है, तो कहा जाता है कि उसी निराकार परमात्मा जो स्वयंभू हैं उनसे वेदों की रचना हुई। तस्मात् यज्ञा सर्वभूत हरिचः सामानि जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। ये यजुर्वेदीय पुरुष सूक्त का मंत्र है। इसमें बताया गया है कि उसी स्वयंभू परमेश्वर से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उत्पन्न हुआ है। तो सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने चार पवित्र आत्माओं के अंतःकरण में वेद को प्रकाशित किया। जिस प्रकार हम बैठ करके कुछ विचार करते हैं, तो उसी प्रकार कुछ हम अपने आप से बात

0: करते हैं तो ये किसी को पता नहीं होता है, ये हमारे अंतःकरण की बातें होती हैं, आत्मा की बातें होती हैं। तो ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि इसी प्रकार चार पवित्र ऋषियों के अंतःकरण में वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वही कब हुआ? तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में। और कहा जाता है कि ऋग्वेद का जो ज्ञान है वो प्राप्त हुआ अग्नि ऋषि के अंतःकरण में, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि के अंतःकरण में प्रकाशित हुआ, आदित्य ऋषि को सामवेद का ज्ञान प्राप्त हुआ तथा अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। और उन्हें जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसको श्रुति परंपरा से अर्थात मौखिक परंपरा से उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने उस वेद का ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि वेद को प्रकाशित करना चाहिए, वेद को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में कलम कागज नहीं था
1: जी,
0: तो उस समय श्रुति परंपरा से वेद को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि उस समय के ऋषियों के जो बुद्धि थी बहुत तेज थी, और इस प्रकार उन्होंने श्रुति परंपरा के माध्यम से वेद को आगे बढ़ाया। इसी कारण वेद का एक नाम श्रुति भी है।
1: अच्छा।
0: और जब उन्होंने इस वेद को प्राप्त किया तो निश्चित रूप से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक यह वेद हमें प्राप्त हुआ।
1: तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अलावा, क्योंकि ये जो चार प्रमुख वेद हैं जैसे कि आप बता रहे हैं, हम सबको पता है, तो इनकी संख्या सिर्फ चार ही है या फिर उससे भी ज़्यादा?
0: देखिए, संहिता के रूप में वेद चार ही हैं
1: जी,
0: लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, नॉलेज की दृष्टि से देखेंगे तो वेद एक ही है, क्योंकि परमात्मा द्वारा प्रदत्त हैं
1: जी,
0: लेकिन संहिता के रूप में वेद चार ही हैं, और इसके बाद उनके उपवेद आदि हैं, लेकिन वेद जो है मूलतः चार ही हैं
1: जी,
0: उनको वेद संहिता कहा गया है। और जैसे अभी आपने कहा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये संहिता के रूप में हैं
1: जी,
0: और निश्चित रूप से ये चार भागों में विभक्त हैं
1: जी,
0: परंतु इन चार वेदों में मंत्र हैं, मंत्र पाए गए हैं
1: जी जी,
0: और मंत्रों की रचना तीन प्रकार से बताई गई है। जिस प्रकार जो पद्यात्मक मंत्र हैं उनको ऋक् कहा गया है, और जो गद्यात्मक मंत्र हैं उनको यजु कहा गया है, और जिन मंत्रों को हम गा सकते हैं, जिनका गायन किया जा सकता है, उनको साम अथवा गीति भी माना गया है।
1: तो उनका अर्थ क्या है मंत्र
0: जी
1: का?
0: मंत्र के अर्थ के की ओर जाने से पहले मैं यहाँ और एक चीज़ प्रकाशित करना चाह रहा हूँ कि वेद, इसको वेद त्रयी कहा गया है
1: जी,
0: अर्थात इन मंत्रों की रचना जो हुई है उनको वेद त्रयी कहा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि वेद तीन ही हैं, वेद चार ही संहिता के रूप में है, लेकिन ऋषि दयानंद जी हमें ये समझाते हैं कि जो मंत्रों की रचना के आधार पर, वेद के मंत्रों के रचना के आधार पर तीन बताए गए हैं। यहाँ ऋक् का अर्थ ऋक् ऋग्वेद से नहीं है, यहाँ ऋक् का तात्पर्य पद्यात्मक मंत्रों से है। यजु यजुर्वेद से नहीं है
1: जी,
0: यहाँ यजु गद्यात्मक मंत्रों से हमें यहाँ समझना चाहिए। और जो गीति हैं, जो साम हैं, सामवेद में जितने भी मंत्र हैं वो गीति हैं, अर्थात उनका गायन किया जा सकता है।
1: अच्छा।
0: तो मंत्र की दृष्टि से कहा गया है कि वेदों में तीन प्रकार के मंत्र पाए गए हैं, इसीलिए इसको वेद त्रयी कहा गया है। और विषय की दृष्टि से भी वेद त्रयी बताया गया है, जैसे ज्ञान, कर्म, उपासना, दंड नीति अर्थात राजनीति, पदार्थ विद्या, आध्यात्म विद्या, तो ये सब कहा गया है वेद त्रयी। तो मंत्र के दृष्टि से तथा जो ज्ञान पाया गया है उसमें, उस वेद में, तो ज्ञान के विद्या के आधार पर उसको वेद त्रयी माना गया है
1: जी। आचार्य जी कृपया बताने की चेष्टा करें, क्योंकि परमात्मा द्वारा दिया गया वेद मानव मात्र के लिए एक वरदान है, इतने लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी वेद आज भी सुरक्षित है, तो हमारे जो ऋषियां हुआ करते थे उन्होंने किस प्रकार वेदों की रक्षा की?
0: देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, अभी हमने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में वेद की रचना हुई
1: जी,
0: और आज तक वह वेद सुरक्षित हैं
1: जी,
0: तो निश्चित रूप से ये हमारे वैदिक ऋषियों की देन है, जिन्होंने परिश्रम किया, वेदों का स्वाध्याय किया, वेदों का पाठ किया और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इसलिए श्रावणी के अंत

0: अंतर्गत हम ऋषि तर्पण भी करते हैं, अर्थात उन ऋषियों को तृप्त किया जाता है। जब हम वेदों का स्वाध्याय करते हैं, अपने घर में महायज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम वेद की रक्षा करते हैं। तो निश्चित रूप से अनेक उपाय उन्होंने अपनाए ताकि वे वेद को इतने वर्षों तक सुरक्षित रख पाएँ। तो व्याकरण का एक महान ग्रंथ है जिसको हम महाभाष्य कहते हैं, तो उसमें कहा गया है रक्षार्थ वेद आध्ययनम व्याकरणम, वेद रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से व्याकरण पढ़ने चाहिए
1: जी।
0: देखिए कोई भी वेद जो है उसमें जो व्याकरण है, जो ग्रामर है वेद का, वो साधारण संस्कृत नहीं है
1: जी,
0: वो वैदिक संस्कृत है। और जब तक हम वैदिक संस्कृत के व्याकरण को पढ़ेंगे तब तक वेद सुरक्षित रहेगा
1: जी।
0: और जिस दिन वैदिक व्याकरण को हम भूल लेंगे, उसको हम अध्ययन नहीं कराएंगे, न करेंगे, तो निश्चित रूप से उस समय से वेद का रक्षा करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए व्याकरण को पढ़ना चाहिए। तो ऋषियों ने व्याकरण की रचना की, जो वैदिक व्याकरण है वेदों के आधार पर, तो उन्होंने उसके आधार पर, अर्थात जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ पाएंगे तब तक वेद को नहीं सीख पाएंगे।
1: आप हमें बताएं कि आज के इस आधुनिक दौर में, इस आधुनिक काल में, जो व्याकरण जो हमारे ऋषियों ने लिखे थे उसको पढ़ना सुनना वो काफ़ी कठिन है, कितना कठिन और कितना आसान है?
0: जी, वैदिक व्याकरण थोड़ा सा कठिन है
1: जी,
0: और उसको गुरुकुलों में आदि पढ़ाया जाता है
1: जी,
0: और निश्चित रूप से कठिन है
1: जी,
0: लेकिन कठिन में भी आसान है।
1: अच्छा,
0: कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम उससे परिचित नहीं हैं
1: जी।
0: जब भी हम किसी कोई भी एक नया विषय लेते हैं तो उसमें बहुत कठिनाई होती है
1: जी।
0: जैसे हमारे देश में इंग्लिश और फ्रेंच आसान लगता है क्योंकि हम उसको बचपन से सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक नया भाषा डाल देंगे स्कूल में पढ़ने के लिए, या हम
1: समय तो लगेगा,
0: समय लगता है
1: जी।
0: तो इसे परिश्रम होना चाहिए और निश्चित रूप से जब हम उस परिश्रम में अपना समय व्यतीत करते हैं तो व्याकरण के जो विषय हैं हमें प्राप्त हो जाता है और निश्चित रूप से उस समय हम वेद को भी जान लेते हैं
1: जी।
0: और साथ ही साथ में वेद की रक्षा के लिए वेदों को कंठस्थ भी रखा गया
1: जी,
0: क्योंकि अनेक ऐसे परिस्थितियाँ आए भारतवर्ष में जहाँ पर जो लिखित रूप में जो वेद थे उनको जला दिया गया, लेकिन आप बाहरी तौर से जो लिखित रूप में है, जो कागज़ में है, उस पृष्ठ में है, पुस्तक रूप में है, उसको आप जला पाएंगे
1: जी,
0: लेकिन जो हमारे वैदिक विद्वान हुए, ब्राह्मण हुए, उनके मस्तिष्क में पूरा वेद कंठस्थ समाया हुआ है, तो उनको आप कैसे भस्म करेंगे, उसको आप कैसे नाश करेंगे? तो उन्होंने वेद को कंठस्थ किया और वेद कंठस्थ करते हुए अपने शिष्यों को भी उन्होंने वेद कंठस्थ करवाए और वेद रक्षा के लिए जटा, माला, शिखा, रेखा, दंड, ध्वज, रथ, घन, पाट आदि जो विकृति पाठ होती हैं, अर्थात वेद के एक भी शब्द आज विलुप्त नहीं है
1: जी।
0: तो ये इन सब विकृति पाठ के माध्यम से एक एक शब्द की रक्षा की गई। विकृति पाठ क्या है? जैसे वेद का मंत्र संहिता रूप में है, जैसे बहुत प्रसिद्ध मंत्र हम विश्वानी देव से भी लोग जानते हैं, तो ये संहिता रूप में है, लेकिन एक एक शब्द को तोड़ करके उसको आगे पीछे बोलना ये उसकी विकृति पाठ हो जाती है। जैसे ओम विश्वानी देव, देव विश्वानी, विश्वानी देव, तो इस प्रकार 8 प्रकार की विकृति पाठ हैं और इन विकृति पाठों के माध्यम से वेद की रक्षा किया गया। और साथ ही साथ में जब वेद के अक्षरों को देखेंगे उसमें स्वर हैं, उदात, अनुदात, स्वरित, तो ये भी उनकी रक्षा के लिए भी आप देखेंगे कि कभी वेद के पाठ करते समय ब्राह्मण लोग वेद संचालन करते हैं, हस्त संचालन करते हैं, जब यजुर्वेद का पाठ होता है तो हस्त संचालन किया जाता है और साथ ही साथ में जब साम वेद का गान होता है तो उंगलियों से उनका स्वर का ज्ञान दिया जाता है। तो ये सब देखिए वेद शब्द शब्द ही नहीं है, मात्र मंत्र ही नहीं है
1: जी।
0: शब्द में जो वेद के शब्द हैं उसके साथ जो स्वर हैं, जो स्वर जुड़े हुए हैं, उनके रक्षा के लिए भी हमारे ऋषियों ने उपाय किए हैं। और साथ ही साथ में जो छंद हैं
1: जी,
0: जो वैदिक छंद हैं, गायत्री आदि छंद, उनके माध्यम से भी वेद मंत्रों को रक्षा किया गया। और सबसे जो बड़ी बात है वेदों की रक्षा के लिए वो है यज्ञ
1: जी।
0: आज कोई भी आप यज्ञ करते हैं तो बचपन से हम मंत्र सुनते सुनते उस मंत्र को कंठस्थ कर लेते हैं
1: जी।
0: जैसे ईश्वरी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, हवन के मंत्र, स्वस्ति वाचन, शांति करण आदि के मंत्रों को हम सुनते सुनते हम कंठस्थ कर लेते हैं। हमने कभी पढ़ा नहीं है लेकिन हम मंत्र बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना
1: जी।
0: तो यज्ञ के माध्यम से

0: वेद मंत्रों की रक्षा कर पाते हैं
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप इस समय मंगलाचरण कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए श्रोताओं, आइए एक भजन सुनते हैं।

0: तो श्रोताओं, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना कितना आवश्यक है और मनुष्य जीवन को साकार बनाने हेतु वेद की जो महत्ता है वो हम समझ पा रहे हैं। अभी अगले 30 जुलाई से श्रावण मास आरंभ होने वाला है। आचार्य जी, कृपया बताने की चेष्टा करें कि श्रावण मास में ही क्यों वेदों का पाठ एवं स्वाध्याय किया जाता है?
1: जी, सही बात है। 12 महीने हैं
0: जी,
1: और 12 महीनों में कभी भी हम स्वाध्याय कर सकते हैं
0: जी,
1: और प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, प्रतिदिन वेद पाठ होने चाहिए
0: जी।
1: परंतु हमारे ऋषियों ने एक विशेष समय चुना है ताकि सभी लोग मिल करके वेदों का पाठ और स्वाध्याय करें। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति की ओर से हमें यह संकेत मिलता है
0: जी।
1: देखिए, भारतवर्ष में मानसून अर्थात भारतवर्ष में अभी वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है भाद्रपद और श्रावण के बीच में, तो उस समय सभी कृषि का कार्य, राजधर्म का कार्य, बहुत से कार्य उस समय ठप पड़ जाते हैं
0: जी।
1: और सभी लोगों के पास अवकाश माने समय रह,

0: आवश्यकता है कि वे जा करके वेदों का पाठ करें, और उस समय के जितने भी हमारे ऋषि मुनि आदि हैं, अपने जो विद्वान हैं, वे अपने तपो स्थली से निकल करके गांव की ओर आते हैं और उस समय अपने वेदों का प्रचार करते हैं, क्योंकि उस समय सभी लोगों के पास समय रहता है और इसीलिए इस समय को चुना गया है। और शास्त्रों में भी यह प्रमाण आया है, श्रावण्यम पौर्णमास्या श्रावणस्य पंचमी हस्ते नवा, अर्थात श्रावण नक्षत्र युक्त श्रावण महीने की पूर्णिमा अथवा श्रावण महीने की पंचमी तिथि के दिन उपाकर्म अर्थात वेद पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। और देखिए, मैंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया है, उपाकर्म, जो श्रावणी के पूर्णिमा को मनाते हैं, और उपाकर्म पंचमी तिथि को भी मनाया जा सकता है, ऐसे गृहसूत्रों का प्रमाण है। तो उपाकर्म का अर्थ होता है वेद का पाठ और स्वाध्याय प्रारंभ करना, और ये वर्षा ऋतु में ही संभव हो पाता है।
1: जी, तो हम जो श्रावणी पर्व है किस प्रकार मनाते हैं?
0: देखिए, अभी हमने कहा कि भारतवर्ष में अभी वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ तो सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी हम अपने जो ऋषियों का जो परंपरा है उसको हम जीवित रखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और इस समय हमें अपने यहाँ यज्ञ आदि का अनुष्ठान कराना चाहिए घर में, समाज में, और यज्ञ अनुष्ठान के साथ साथ यजुपवीत भी जुड़ा हुआ है। इस समय यजुपवीत को भी बहुत महत्व दिया गया है, और यजुपवीत के साथ साथ व्रति बनना भी होना चाहिए, अर्थात व्रति बनते हैं। व्रत का अर्थ होता है कर्म करना, श्रेष्ठ कर्मों को करना। तो इस पर्व को कैसे मनाएं? तो कहा जाता है कि पहले हम जब यज्ञ आदि का अनुष्ठान करें तो पहले अपने घर के सामने ओम का ध्वज स्थापना करें, उसको स्थापित करके ही तब यज्ञ आदि का अनुष्ठान करें, और यज्ञ के अंतर्गत वैदिक विद्वानों को बुला करके वेद पाठ कराएं, और वेद मंत्रों पर जो अर्थ हैं, वेद के अर्थ हैं, वेद मंत्रों पर प्रवचन आदि होने चाहिए, और हमें खुद स्वाध्याय भी करना चाहिए। प्रायः हम कहते हैं कि ये पंडितों का ही काम है वेद का स्वाध्याय करना, नहीं, वेद सबके लिए हैं
1: जी।
0: वेद कोई भी संप्रदाय के लिए नहीं, वेद मानव मात्र के लिए हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे कि वेदों का अनुवाद अनेक भाषाओं में भी हो चुका है, तो इंटरनेट के माध्यम से या अनेक पुस्तकें प्राप्त हैं जो इंग्लिश में है, अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बच्चों को विशेष करके वेद से जोड़ने के लिए हम प्रयास करें। 30 दिन हैं और इसके बाद चातुर्मास्य भी हैं, 4 महीने पर्यंत इस कर्म को किया जाता है। तो हम किस प्रकार इस पर्व को मनाएं, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करें, और खुद अपने घर में यह प्रयास करें कि हम प्रतिदिन एक वेद मंत्र पर विचार करें, एक वेद शब्द, वेद के एक शब्द पर विचार करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा।
1: तो जैसे कि आपने कहा, अगर वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना मात्र करेंगे रोज़ाना, जैसे कहते हैं प्रतिदिन, तो हमारा जीवन साकार हो सकता है। और श्रावणी वर्ष का क्या संदेश है आचार्य जी?
0: देखिए, श्रावणी का अर्थ होता है सुनना
1: जी,
0: टू लिसन। और आज समाज में एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, हमारे जो नवयुवक हैं, बच्चे लोग भटक रहे हैं
1: जी।
0: अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में फंस रहे हैं, तो शायद हम जो बड़े लोग हैं उनको सुन नहीं पा रहे हैं। श्रावणी पर्व हमें सुनने के लिए प्रेरित करता है। सुनना क्या है? तो कहा गया है वेदों को सुनना है
1: जी,
0: बिल्कुल सुनना है, लेकिन जो बच्चे बढ़ रहे हैं, प्रायः वे लोग घर पर अकेले रहते हैं
1: जी,
0: माता पिता काम करने जाते हैं, घर पर कोई नहीं रहता है, तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है
1: जी।
0: तो ये हमें एक बात, ये एक श्रावणी का संदेश मैं ये जानना मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, सभी परिवार में हम सुने। जिस प्रकार अपने आप को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, तो आप निराश हो जाते हैं
1: जी।
0: तो सुनना भी एक आवश्यक क्रिया है जीवन में।
1: तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, एक व्यंग है आचार्य जी, कि सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्या सुनाने वाला सही तरीके से सुना भी रहा है?
0: जी बिल्कुल, तो हमें किन को सुनना है
1: जी,
0: ये भी तो जानना चाहिए। जैसे इस पर भी मैं आ रहा हूँ अभी, जैसे मैंने कहा कि विद्वानों को सुनना चाहिए, वेदों को सुनना चाहिए, और बच्चों को प्रतिदिन सुनना चाहिए माता पिता को, और जो गरीब हैं, जो बीमार हैं
1: जी,
0: हम प्रायः इस पर दूर हो जाते हैं, जो बीमार हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, जो लोग बीमार हैं उनके यहाँ भी जा करके उनको सुनना चाहिए, उनको क्या आवश्यकता है। और कभी कभार जो लोग अकेले रह रहे हैं, जो वृद्ध

0: लोग हैं उनके यहाँ जा कर के, हम जो गरीब लोग हैं उनके प्रति भी जा कर के कुछ अच्छा कार्य करें उनके लिए, ये भी एक यज्ञ का प्रतीक है।
1: जी आचार्य जी, मंगलाचरण कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आप हमें बताएं कि श्रावण मास के संदर्भ में कोई विशेष कार्यक्रम है मॉरिशस आर्य रविवीर प्रचारिणी द्वारा?
0: जी, एक तो हम MBC को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हर वर्ष हमें यह मौका देते हैं कि हम आ करके यहाँ पर पूरे देश में वेदों का प्रचार कर पाएँ मंत्र पाठ और विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से, और साथ ही साथ में हम अपने प्रत्येक शाखाओं में यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। और हमारा जो अंतिम पूर्णाहुति बहुकुंड यज्ञ होगा वो हमारे जो बेलमाव में जो हमारा भवन है वहाँ पर वो संपन्न किया जाएगा, और समय अनुसार आप लोगों को वो संकेत किया जाएगा कब हम कर रहे हैं।
1: तो श्रोताओं, आज के आधुनिक युग में वेद उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों वर्ष पहले थे। वेद संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान, आध्यात्म और जीवन दर्शन का अमर प्रकाश स्तंभ है। मॉरिशस आर्य रविवीर प्रचारिणी सभा, विशेषकर डॉक्टर आचार्य सुनील एवं आपको आचार्य सूरज प्रकाश खेदू शास्त्री जी, आप दोनों को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं आपको भी अंजू। चलते चलते यही कहेंगे कि श्रावण मास में केवल मन को पवित्र बनाना नहीं होता, अपितु सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, सेवा करना और वेदों के बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलना भी है। जब भक्ति के साथ सदाचार जुड़ जाता है तभी श्रावण का वास्तविक महत्व सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यगण, प्रणाम, शुभ दिन।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: Depuis premier jour, nous fins toujours là. À zout l'écoute, à zout côté. À chaque moment important de zout la vie. Nous extra happy trouve zout tous les jours connectés, grandis, épanouis. Et ensemble, nous pouvons continuer. Continuer causer, rire, partager, se dépiler, danser, amuser, rêver, vibrer. Zodi, nous encore plus confiants pour dire. Côte chaque nouvelle technologie qui nous peut amener, pour faire chaque Mauricien vivre l'expérience encore plus mighty CIA. Et c'est qu'ici, nous pour la même, à ce côté. Zodi, dis-moi, vive-li avec mighty.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।
4: ये सुनते हैं संक्षिप्त समाचार, अभी के साथ आपको नमस्कार। अभी
5: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल का ध्यान भटकाना कम। जी हाँ, सरकार ने एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है स्कूलों में अनुशासन बढ़ाना और पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना है। सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज की मदद से ई पासपोर्ट के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत एक सलाहकार इस नई प्रणाली को लागू करने के वास्ते तकनीकी सहायता और क्वालिटी चेकिंग की सुविधा देगा। कल शनिवार 18 जुलाई से वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की एक टीम मॉरिशस में है। 21 जुलाई तक ये टीम गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट के लिए पहली बार 360 डिग्री की खास तस्वीरें और वीडियो लेने का काम करेगी। इस काम के लिए अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस 4 गाड़ियां पूरे द्वीप में घूमेंगी। ये गाड़ियां यहां की सरकारी सड़कों, मुख्य पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक जगहों तथा अन्य खास ठिकानों की तस्वीरें कैमरे में कैद करेंगी। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क आने से पहले नया विवाद खड़ा हो गया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि वे नेतन्याहू की गिरफ्तारी के विकल्पों पर कानूनी सलाहकारों से बात कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार।
6: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
5: काशीनाथ रोड

0: पुस दे फ्लैक में काशीनाथ रोड पुस दे फ्लैक में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री किशन बलरूप जिन्हें सब लोग किशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती बलरूप किरण काजल के घर काशीनाथ रोड बुज्जे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुए की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट नून। मोसलमान डेलिस विल्नो मेबर्ग में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल मुनाफ इस्काली जिन्हें सब लोग भाई मुनाफ के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के 11:30 बजे उन्हीं के मकान मुसलमान दिलिसा विल्नो मेबर्ग से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए विल्नो स्थित एरा रहमा की मस्जिद ले जाई जाएगी। फिर दफनाने के लिए पॉइंट भोक्यूस रिवेदिक्रेल का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

मोहतरम सामईन, अभी आपने सूरा मुल्क की तिलावत समात फरमाई। सामईन, सबसे पहले हम माहे सफ़रुल मुज़फ़र के उस सुनहरे वाक़े का ज़िक्र करेंगे जो ना सिर्फ जज्बाए ईमानी की मेराज हैं बल्कि मुसलमानों की इत्तेहाद, बहादुरी और तवक्कुल का बेमिसाल मज़हर भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़तेह खैबर की। फ़तेह खैबर हमें आज भी ये पैगाम देती है कि मुश्किलात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर नीयत साफ़ हो, क़यादत रास्तबाज हो और अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा हो तो कामयाबी मुकद्दर बन ही जाती है। सामईन, याद रहें आप अपने पैगामात, अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं। 5251700005 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए तिलावत कलाम पाक के बाद ये हमदे बारी व ताला मुलायजा फरमाएं।

सामईन कराम, फ़ुगैसाइड क्यूपिप से हमें एक पैगाम मौसूल हुआ है आज रुखसाना अमृत की तरफ से। आज मेरी अम्मी रुखसाना अमृत की सालगिरह है। चचा हसन खलील अमृत, नौशीन अमृत, आलिया अमृत, अरहान अमृत सबकी सालगिरह है। सबसे पहले तो आप सभी को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनको सेहत, सुकून, रिज़्क़ हलाल और बेहिसाब खैर अता फरमाए। उनकी ज़िंदगी का हर नया साल पहले से ज़्यादा खूबसूरत और बाबरकत हो। उसके बाद त्रियोले और कौमाली फैमिली में, त्रियोले से कौमाली और बंधु फैमिली से जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। सामईन, आइए पैगामात का सिलसिला बाद में जारी रखेंगे, आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। पाको हिंद में तबलीग इस्लाम के लिए जिन औलिया कराम ने नुमाया किरदार अदा किया है, उनमें हज़रत दाता गंजबख्श हुजवेरी रहमतुल्लाही का नाम सर फहरिस्त है। माह सफ़रुल मुज़फ़र की 20 तारीख को आप रहमतुल्लाही का उर्स मुबारक मनाया जाता है। आप रहमतुल्लाही तसव्वुफ़ के आला मरतबे पर फ़ाइज़, इश्क़ हकीकी से सरशार बुज़ुर्ग थे। आप रहमतुल्लाही ने तबलीग दीन इनफरादी कोशिश, तसानीफ़ और रूहानी क़ुव्वत से इस्लाम को आम किया और कसरत से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए।

सामईन कराम, जैसा कि आगाज़ महफिल में हमने ज़िक्र किया था कि आज हम माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में पेश आने वाले वाक़ियात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। माहे सफ़र की 22 तारीख को हज़रत पीर सैयद ज़हूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ था। दरअसल आप रहमतुल्लाह अलैह 19वीं सदी के एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके मॉरिशस तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी शख्सियत, सादगी और इखलास ने हर एक के दिल को मुनव्वर व मुजल्ला किया, रोशन किया। लोगों की खिदमत, बातिन की सफाई और इश्क हकीकी की तालीम आपका पैगाम था। हज़रत पीर सैयद ज़हूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार गिश्तिया के कब्रिस्तान में अकीदत व एहतराम से ज़ियारतगाह बना हुआ है। आइए उनकी एक मनकबत समाप्त करते हैं।

मौज़ सामईन, उस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन नहीं जानता जिसने कलम उठाया तो फतवे इल्म से जगमगाने लगे और ज़बान खोली तो नातों में इश्क की खुशबू बिखर गई। सामईन, मैं उस इमाम की बात कर रहा हूँ जिन्हें दुनिया आला हज़रत के नाम से जानती है। फ़ख्र अहल सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 25 तारीख को हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह का इल्म समंदर की गहराई रखता था और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रग रग में रवा था। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक आलिम नहीं, एक तहरीक का नाम है। ऐसी तहरीक जो दिलों को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ती हैं। आइए उनका एक खूबसूरत कलाम समाप्त करते हैं।

सामईन कराम, माह सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र की 28 तारीख को करीम अहले बैत नवासाए रसूल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का वजूद सरापा मोहब्बत, सब्र और इत्तेहाद की अलामत था। कुरान पाक ने आपको फ़र्जिंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा दिया। इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु का अखलाक ऐसा था कि दुश्मन भी शर्मिंदा हो जाता और सखावत ऐसी कि खाली हाथ कभी वापस न जाता। इसमें शक नहीं कि इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु वो आईना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और तरबियत झलकती हैं।

उम्मीद है आपने आज के प्रोग्राम को ज़रूर पसंद फरमाया होगा। हर हफ्ते की तरह आज भी आपके पैगामात और मोहब्बत भरी दुआओं का दिली शुक्रिया। आज हमने इस मुख्तसर से वक्त में उन वाकयात का ज़िक्र किया जो इस महीने में पेश आए थे। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला औलिया कराम का फैज़ान हमें नसीब फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इन दुआया कलिमात के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। दिल नादा को रुख्सत होना गवारा नहीं, मगर यही रस्म दुनिया है। इंशाअल्लाह ज़वजल अब हमारी मुलाकात अगले इतवार को होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।

0: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: मॉरिशस से बांग्लादेश रियागे काले 11 मणि आगे रहते.

ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम पराशक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम पराशक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम।

0: शक्ति ओम शक्ति ओम पराशक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम पराशक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति
1: हॉलीवुड टॉप 10 Hollywood Top 10 with Sundaram.
2: Hollywood Top 10 சிறந்த தமிழ் பாடல்கள். உங்கள் விருப்பமான பாடல்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். SMS மூலமாக 5718567757 5718567.

0: Hollywood Doctor.
1: Number 10.
2: Album Sync Indie.

0: Number one.
1: Album Tali Pogre.

0: आइए सुनते हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ओब्ले तोस्ते और CWA पंपिंग स्टेशन रिजर्वर क्लूनी के रहने वालों को सूचित करता है कि सोमवार 20 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर 3:00 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ सी भी माइबू के रहने वालों को विशेष कर रू सुफ्लेर, रू डे कॉलोनी, रू मोरिस, रू बुशों, रू डे लाशो, रू अंगर, रू शाला और आसपास के रहने वालों को सूचित करता है कि सोमवार 20 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ सीबी श्वाजी बे जुकाप और मकोंदे के रहने वालों को सूचित करता है कि बुधवार 22 जुलाई 2026 को और गुरुवार 23 जुलाई 2026 को सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सभी मरम्मत कार्यों के बाद बिना किसी पूर्व सूचना की बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
1: मुत्याल स्वरालु, मुत्याल स्वरालु, मुत्याल स्वरालु, मुत्याल स्वरालु।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग,
2: स्वर तरंग, स्वर तरंग,
1: स्वर तरंग।

中国官方要求梳理历年文物被盗丢失线索，摧毁犯罪链条。中国官方宣布部署深入

0: तुम निकलो। क्यों है? शब्द इससे आ गया, जो गया, यो गया,转圈转转，
1: 哎呀，
0: 我唱啊，
2: 我唱唱不出来，
0: 唱不出来就说，
2: 我说啥呀？
0: 抓谱，
2: 啥叫抓谱？
0: 这个节奏就是抓谱，
2: 改出板了，
0: 慢走快板，把那词儿都给我说出来。春季里开花，
2: 春季里开花，
0: 四四五六，啊六六六，我看不是我春打六九头，就这么说，啊就这么说，啊就这么说，春季里开花，四四五六，啊六六六，我看不是我春打六九头，这么包装简直太难受，我张不开嘴，我跟不上六，啊你说难受不难受？你说难受不难受？哎呦，哎呀，哎呀，好啊好啊好啊好啊。好好好，
2: 这还好呢。
0: 哎，好极了，
2: 这叫评戏啊。
0: 这就是我们包装出来的评戏。
2: 你别糟改人了
0: 啊，
2: 我算琢磨透了。就你们这种人把我们这好玩意儿都给糟蹋了。
0: 哎呀，老脑筋要改一改了。
2: 我不干了，给你。
0: 赵老师，今天您干也得干，不干也得干。
2: 因为啥？我卖给你了。
0: 白纸黑字签着您的名，不然我可就要上法院。
2: 我说我不签，你别让我签，我签，
0: 告我去吧。哎，我提醒您，这可签着您的大名呢。
2: 我签的是啥？
0: 麻辣鸡丝。
2: 我不干了。
0: 你怎么能签这个名呢？
2: 你包装给我包的。
0: 别，赵老师你不能这样啊。赵妈，奶奶，别，姥姥，姥姥，哎，您不能走啊，你一走我们公司那就完了。
2: 完了
0: 啊。
2: 嗨。
3: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
4: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

हेलो नमस्कार मॉरिशस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश हैं। दिन है रविवार और अभी शाम के 4:16 हो चुके हैं। हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है कि जब सब कुछ खत्म लगने लगे तो दिल में एक आस छुपा रहता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक आशा का किरण है, सब ठीक हो जाएगा। और वो आस

तभी लगता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है और अंदर की एक आवाज आती है कि नहीं, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो कहानी शुरू हुई है। कहते हैं ना, हर अंत के बाद एक शुरुआत अवश्य होता है, और जो भी शुरू होता है उसका भी एक अंत होता है। तो चलिए आज हम आस के बारे में बात करेंगे। वो छोटी सी एक ख्वाहिश, वो छोटी सी एक होप, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएगा। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और कोई भी अगर आपका अनुभव है जहां पर सब कुछ टूटा हुआ सा नजर आता है और फिर भी आप फिर से उठ गए, आपका एक एहसास, आपका वो जो कहानी है, आप हमारे साथ बांट सकते हैं 402-808-5 पर का सौंदर्य का थोवा 85 पर। तो चलिए

0: चलिए लाइन पर एक श्रोता हैं, उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहानी है। हेलो,
1: नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार हरीश जी, कैसे हैं आप?
1: जब आपकी आवाज सुनी जो बहुत खुश हो गए।
0: धन्यवाद।
1: जी, क्योंकि हम इंतजार करते हैं आपके प्रोग्राम को। हाँ। कैसे विषय लाएंगे, क्या हम सोच विचार करेंगे, कैसे आपस में बांटेंगे अपने विचारों को, तो बहुत खुश हुए पूजा जी कि आज आप आए और एक अच्छे विषय रखे हैं। क्योंकि हम सब इंसानों में, हमारे जीवन में कोई वक्त आता है, ऐसी वक्त आता है जब बहुत सी कठिनाइयों की सामना करते हुए हमको लगता है कि सब खत्म हो गया। तो आपने कहा अनुभव, तो मैं कहूँगा एक अनुभव मेरे पास है। मेरे अनुभव है एक बीमारी, क्रीज का औजात, 9 साल हो गए।
0: अच्छा।
1: नवंबर में हत्या था 2017। हमको एक मिनी क्रीज का औजात हुआ था। जब हम हॉस्पिटल जूटी हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, तो जैसे कि हम पहुंचे हॉस्पिटल में, हम सभी डॉक्टर जो वहां थे कैजुअलिटी में, हमको ले गया आईसीयू में। आईसीयू से मैं बहुत डिफिकल्ट पेशेंट है, बहुत से प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली हमको एडमिट किया गया आईसीयू में। तो वहाँ जब जितने लापरवाही हमको दिए गए, जितने कॉम्प्रोमाइज में हमको खाना पड़ा तुरंत, तो ऐसा लगा कि बस अंत आ गया। नहीं, लेकिन जब परिवार आए एक दिन के बाद जब हमको ये मेडिकल के हमको दिया, डॉक्टर स्पेशलिस्ट हमको देखे, 4-5 डॉक्टर हम बारी बारी में हमको देखे, नर्सेज हमको केयरफुली फॉलो करे, तो लॉन्डेमैन वेरी नेक्स्ट डे हमको ये सुलाजमा मिला। लेकिन जो पहले दिन था, हमको ऐसा लगा कि बस अंत हो गया, अंत होने वाला है। लेकिन ये मैं कहूँगा पूजा जी कि उस वक्त एक ही बात आती है हमारे ध्यान में, भगवान।
0: हाँ, ये प्रभु जी
1: कहाँ हो, क्या कर सकते हो। हमारे जो विश्वास है प्रभु पर, भगवान पर, क्योंकि वो हमको जिंदगी देते हैं और उन्हीं के हक है जिंदगी लेने के लिए। हाँ। और कोई बीमारी के लिए नहीं। तो ये उम्मीद हमने रखा कि ये बोलते हैं लुमियर ओबूजी चैनल, जो हमारे ये प्रभु पर विश्वास जो रहा, उम्मीद रखा हमने, तो

0: परिवार आए दो दो दो दिन के बाद उनको आईसीयू से निकाल कर जनरल वार्ड में, 5 दिन 5 दिन हम आदमी थे जीपी हॉस्पिटल में। तो ये मेरा अनुभव है कि कभी हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो प्रभु हमको, भगवान हमको इसी जिंदगी दी है, इस दुनिया में भेजा है, वो जब दिन आएगा तब हम जाएंगे, लेकिन जब तक जान है, जब तक हमारी सांस है, हमको उम्मीद रखना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम है हमको टट कर लड़ना चाहिए, एक जंग की तरह, जैसे जिंदगी में एक जंग है, हमको संघर्ष करना चाहिए, और उसके बाद जो विक्ट्री हमको मिलता है, हमको हमारे जो विश्वास है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो आज हम कह सकते हैं 9 साल बाद अभी तक हम जिंदा हैं, प्रभु की कृपा है, तो हमको कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
1: आपने अपनी इतनी दुख भरी कहानी हमें सुनाई और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। और आप, मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा यूं ही स्वस्थ रहें और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद इस आस के लिए कि हाँ, कहीं ना कहीं भगवान हैं जो हमारी जो मुश्किल है वो सॉल्व कर ही देते हैं, उसका निवारण कर ही देते हैं। तो चलिए, एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी सुनते हैं। नमस्ते दादाजी।
2: नमस्ते बेटी। समाचार?
1: समाचार ठीक है दादाजी, आप कैसे हैं?
2: अभी तो नहीं अच्छा है बेटी, पर अलग जरूरत बहुत बच्चा ही की।
1: बोला
2: तो पहला तो सब सरोता रोके प्रणाम करत बनी पर प्रोग्राम में भाग लो तो बन जा। जाने लेना जिंदगी जो है ये बहुत लंबा है। हमनी के कबो कबो बुझाला कि छोटा है एकदम। तो तकलीफ में हम अपन जी तोरा सुनाओ बानी, ऐसा तकलीफ में पड़ गई नी कि सब कोई से दूर हो गए, पारिवारिक गांव में भी, फिर भी बुझाई कि अब तो अंतिम ही बा, कहा जी बकवालू कर दिया। फिर भी बैठ करके चैतन्य महाप्रभु के याद में कोशिश कर ली और आज बहुत सब भर गया, पारिवारिक दोस्ती सब भरल बाटे भगवान के छो से। घमंड के बात नहीं की है, भगवान के छो से। तो ये हमारा याद आ गया कि आज तोर प्रोग्राम में कि जिंदगी में हरदम निराश नहीं हुई के, कोशिश करे के और देवे होला तो हर खुशहाली ऊपर के हाथ में बा। यही मांग के व्रत है बेटी, अपन अनुभव जन हमारे पर बीतल तुम थोड़ा सुने लिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। नमस्ते। और आपने जो भी कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको कहेंगे शुभ संध्या। धन्यवाद।

0: तो चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, आपका स्वागत है हम और आप कार्यक्रम में।
1: जी, मेरा नाम है दीला है।
0: आपका
1: के।
0: स्वागत है दीला जी।
1: सब कोई के स्वागत बा, श्रोता लोग के टोरो और जेता मरीज भर सब सुनत हो। एगो बहुत बढ़िया प्रोग्राम बा और एगो बहुत बड़का अति विषय अनुभव
0: नहीं आस, मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो हमारे अंदर एक आस होता है ना कि कुछ ना कुछ ठीक होगा। आप आपका जो जीवन में जो अनुभव मिला है, जहाँ पर आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी आपने हिम्मत से, धैर्य से जो है आप उस दुख का सामना किया, और यही आस है ना, जिसे हम कहते हैं आस।
1: तब भगवान सब इंसान के, सब जनावर के है, सब दिले बहाई। तो हमने के चाहला गिलेवे हुई के ना, चाहला लिखले के हमेशा ना, तो कैसे लिखल सब पहला भगवान।

0: के चाहना पुए करे के
1: हाँ
0: कि हम ऐसा नहीं को अच्छी में है दुख में है तो हमारा अच्छी करिया समझला। और विश्वास चाहना रहे के ऊपर में ना, और जितना प्रॉब्लम है मन में लावी में सब सब रिजूट करे तो सब मिलजुल के चाहना रिजूट करे के ना। अब जब एगो आदमी बर्बाद होता था ढेर आदमी नहीं आई निकाले तोहरा ना,
1: हाँ
0: जोन परिवार बा जोन संगतिया बा ऐसे लोग ओ लोग आके चोरा निकाली ना, और उचाला लागी है करे के हो अच्छा में से निकले के ना अनुभव से बिन लागिया से नहीं हुई
1: नहीं हुई।
0: क्या एगो विक्टोर मिली ना समझ लो। और वो ढेर उपस्ताक हो कोनो उपस्ताक में रवे तो छाला अथी करे के ओकरा फोंसिया करे के ना, कैसे एगो बड़का एगो कची रहल एगो एगो एगो बड़का एगो अची रहल एगो सावर रहल बोले फ्रांसे में बोले बोले दान ला वी इल या बोकू दे ऑब्स्टैक दान ला वी इल फो ले फ्रांसिया पू ले फ्रांसिया ओ बू समझ लो। अब तू एगो जब अच्छी में रब बर्बाद हो तो है ना उन्हें तो आप्लास रबे तो कैसे हुई तब प्रॉब्लम नहीं रिजूद हुई जामे तेरा चाहना गो मूव करे के चाहना कोई से मदद मांगे के तब जाके अच्छी कर बस। या भाई ये हमारे को छोटा संदेश बा आज को फिनाल बा हम जाते हैं अभी यहाँ शॉपिंग मॉल ये थी
1: हाँ
0: हाई मौका तो है सब छोटा लोग के नमस्ते करत है
1: हाँ
0: तोरो एगो अच्छी करत है हर हर अच्छी के जिमोस कैसा निशा ने को पोगा माने ल और वो ग्राचिस में के मिलता सब लेकिन क्या अच्छी करता है। अब हम पारे होते जाते आले बहुत सब कोई के
1: बहुत
0: नमस्ते
1: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
0: आ ये जब बर्बाद होता है वही बोला था
1: हाँ एक और जो है श्रोता लाइन पर है, चलिए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो पूजा जी, नमस्ते। ठीक
1: नमस्ते इंदिरा जी, कैसी हैं आप?
2: हूँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कैसी हैं?
2: प्रोग्राम मैं ठीक हूँ, अभी बिल्कुल ठीक है।
1: बताइए।
2: और बात यह है कि जितना सुंदर सुंदर प्रोग्राम आप लाते हैं तो वो तो हम लोगों का जिंदगी ही के लिए
1: धन्यवाद।
2: पूछने के लिए कि जिंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं, क्या दुख है क्या सुख है सभी, और क्या क्या करना भी चाहिए जो नहीं करना चाहिए वो तो नहीं करना चाहिए ना, इसलिए मैं प्रोग्राम में रख देती हूँ कि जिसे जिसे लाते हो और उसने उसने और आएंगे, क्योंकि जो करना है जो नहीं करना है हमने जो किया है और नहीं किया है वो तो समाप्ति आपको मिलते जा रहे हैं, इससे ज्यादा बढ़कर क्या मिलेगा ना। ठीक है ना, ओके बाय बाय बाय
1: बाय
2: बाय, थैंक
1: बाय या बहुत बहुत
2: यू वेरी मच,
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर है, बड़ा ही भावुक है। आस, जब सब कुछ खत्म होने लगे, ऐसा लगे कि अकेले पड़ गए हैं और कुछ राह दिखाई ना दे, फिर भी दिल में एक आस जग जाती है कि कहीं ना कहीं परमात्मा है जो हमारी इस कठिनाई में भी सामना साथ देंगे और इस कठिनाई को भी हम पार कर देंगे। चलिए आज हम आस के बारे में बात कर रहे हैं।

0: चलिए लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या क्या है जो हमारे साथ बांटना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार रवीना जी, कैसी हैं आप?
1: मैं फिलहाल ठीक हूँ। और आशा करती हूँ आप भी ठीक हैं।
0: मैं ठीक हूँ और आपका बड़ा ही स्वागत हम करते हैं हमारे आप कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: तो मैं जो विषय आपने रखा है कहें आप कहें।
0: हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी वीना जी। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ हाँ हाँ वीना जी बोलिए।
1: सुनाई दे रहा है आप?
0: हाँ हाँ जी।
1: हाँ तो मैं कह रही हूँ ये जो शब्द है आ

0: आस कहें, होप कहें, उम्मीद कहें, आशा कहें, देखिए इसका पर्यायवाची होता है कि हमें कभी मतलब आशा नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। देखिए जीवन जो है ना हमारा, ये तो उम्मीद पर ही टिका है बहन जी। ये बहुत बड़ा एक शब्द है, उम्मीद के सहारे ही आदमी जीवित रहता है, अपना सब कार्य करता है।
1: जी
0: जीवन में जब भी प्रतिकूल अवस्था होती है, प्रतिकूल यानी कि आपके फेवर में नहीं होता है कुछ भी, हमें उसी आस का सहारा लेना पड़ता है। और वो आस जो है सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा के ही हम आस है। तभी तो गाने में भी कहा गया है ना, मेरा आस में आस प्रभु मेरा, मेरा आस में आस प्रभु मेरा। क्या है कि जो आशा की जो किरण है ना, वो हमें भगवान की तरफ से ही मिलता है और हमें वही मार्गदर्शन करते हैं। फिर हमें जो संसार के लोग हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जो अगल बगल में है, तो वो भी कुछ हमें मार्गदर्शन देती है कि आप ऐसा करो। तो क्योंकि मेरे जीवन में, मैं अगर कहूंगी ना, तो मेरे जीवन में भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां, जैसे अनुभव की बात अगर मैं कहूँ तो बहुत आया है। एक तो बीमारी को लेकर भी आया है, जहाँ मैं एकदम निराश हो गई थी, जैसे कि एक भाई ने भी कहा, बीमारी का उदाहरण दिया, तो मेरा भी बीमारी से, मैं भी ग्रसित थी एक ऐसी बीमारी से, कह सकते हैं कि जैसे कि उससे निकलना बहुत मुश्किल था। मैं 8 साल उस बीमारी के साथ रही थी पूजा जी, समझ
1: 8 साल.
0: रही है ना। हाँ, 8 साल, बहुत एक एक कैसे कहेंगे, एक रोगी कहेंगे उसको, बहुत डॉक्टर दवा बहुत किया, और साथ साथ में मैंने अपनी आशा नहीं छोड़ी। मैं भगवान से बैठ के बातें करती थी,
1: अच्छा.
0: उनसे बात करती थी कि आपने मुझे जो दिया है ये मैं स्वीकार करती हूँ, आप चाहे मुझे सुख दें चाहे दुख दें, दोनों मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन अगर आपको, मेरा जीवन है अभी, मुझे जीना है, तो आप मेरा स्वास्थ्य लौटा दीजिए, नहीं तो आप मेरा जीवन भी ले सकती हैं। या तो जीवन लीजिए, या तो मुझे एक रास्ता दिखाइए, या तो मेरा स्वास्थ्य लौटाइए। तो 8 वर्षों के बाद में, पता नहीं, और लोगों से कहते, डॉक्टर को भी देखा और बहुत से लोगों से भी पूछा बीमारी के बारे में, उसके निदान के बारे में, ऐसा करते करते फिर मैं ही आपसे कहूंगी कि मुझे ही पता नहीं कि किसके कहने से, क्या करने से मैं उस रोग से मुक्त हो गई, पूर्णतः स्वस्थ हो गई मैं। धीरे धीरे मैं तो दुबली पतली भी हो गई थी, मेरा सारा वो जो था एनर्जी चला गया था, मैं तो एकदम से बेहाल जिसे बोलते हैं हो गई थी, जैसे कि मैं अब पलंग से उठूंगी ही नहीं, कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। लेकिन प्रभु की बहुत कृपा है कि उन्होंने मुझे जो आस दिया, मैंने अपने विश्वास और आस्था को बनाए रखा उन पर, और उनसे ही मैं बातें करती थी कि आपने मुझे क्या दिया, शायद ये मेरे कोई कर्म, बुरे कर्म का फल है या क्या है, तो आप इसका ही निदान करो, आप ही के हाथ में, क्योंकि भगवान से बड़ा डॉक्टर तो संसार में कोई और है नहीं पूजा
1: कोई
0: जी।
1: और ये सही बात
0: मैं
1: कहा
0: तो ये
1: आपने.
0: मानती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वही है, वही हमें हमें स्वास्थ्य देते हैं, और वही हम अपने कारण से बीमार हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य तो वही नहीं होती, वो वही हमारा इलाज करते हैं। इसीलिए मैं औरों से भी यही कहूंगी कि किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में निराश नहीं होना है, आशा का दामन हमेशा थामे रखना है। आपको लगेगा कि पानी गले तक आ गया है, नाक, तो अब मैं डूब डूब ही जाऊंगी, फिर भी एक आशा की जो पतली सी जो वो तिनका होता है ना, छोड़ना नहीं चाहिए, क्या पता उसी के सहारे आप पार हो जाएंगे। तो कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण है मेरे आसपास में भी, लोगों के बहुत से ऐसे अनुभव है, लेकिन सभी तो मैं नहीं बांट सकी, लेकिन ये मैंने स्वयं का एक छोटा सा अनुभव सुनाया। तो यही मैं कहूंगी कि आप किसी भी अवस्था से, आपको संघर्ष करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है किसी भी अवस्था में, चाहे कुछ भी हो जाए, और अपने भगवान पर से अपना विश्वास भी डगमगाना नहीं है। अगर आप पत्थर की तरह अडिग रहेंगे ना, पर्वत की तरह, तो जरूर भगवान भी

0: उस समय में कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेते हैं, देखते हैं कि ये मेरा जो भक्त है, मेरा जो बंदा है, ये इतना मजबूत है, ये टिक सकेगा कि नहीं। फिर आप देखेंगे कि आप फूल की तरह उसमें से बाहर आ जाएंगे। तो बस मेरा यही कहना था। वैसे कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं औरों को भी सुनूंगी।
1: और आपने सही कहा है वीना जी, मैं तो ये भी मानती हूँ कि अगर आपके आपका जो दिल सच्चा है, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो आप इस समस्या से निकल ही जाएंगे। हाँ,
0: आपके साथ बुरा भगवान करेंगे ही नहीं, और भगवान जो है किसी के साथ वो बुरा करते नहीं
1: करते नहीं।
0: हम बुरा बुरे का फल अपने कर्मों से ही पाते हैं। जो भी कुछ हमें मिलता है इस जीवन में, वो हमारा ही किया धरा मिलता है। हमने जो बीज रोपा है ना, उसी का फल हमको मिलता है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। उनके नजर में वो तो समदर्शी है, सभी को समान भाव से देखने वाले हैं। हम ही है कि हम उन पर दोष आरोपित कर देते हैं कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। थोड़ा सा दुख आए तो कहते हैं हाँ भगवान को देखो ना, दिखाई नहीं मुझे इतना दुख। सुख आता है तो नहीं बोलते है कि देखो भगवान ने मुझे इतना सुख दिया है, है ना।
1: तो
0: हाँ, बस यही मैं बोलती हूँ कि कभी भी ऐसी बातें नहीं, अपनी आस्था अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, तो हम पार हो जाएंगे, किसी भी कठिन परिस्थिति से निकल जाएंगे, उबर जाएंगे। ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। और आप हमेशा जैसे आज देकर ही चली जाती है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत देने के लिए और अपनी कहानी के लिए।
0: आपको भी बोलती हूँ क्योंकि जीवन तो हमारी मुश्किलों से भरा पड़ा है ना पूजा
1: जी। ये तो है,
0: किसी के जीवन में कोई समस्या कोई मुश्किल नहीं है। मैं जानती हूँ आप सभी के जीवन में है, तो मैं आपको भी यही कहती हूँ, अब कभी भी हिम्मत मत हारना चाहिए,
1: हिम्मत नहीं हारना जी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें।
0: बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी,
0: बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते। तो चलिए और भी श्रोता हैं लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार बसंती जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
1: आप सुनाइए।
2: शुरू करूँगी,
1: चलिए।
2: ये है एक छोटा लड़का के एक उसकी दुख भरी कहानी।
1: लड़के का,
2: अच्छा। लेकर बैठे हैं कि कल सवेरा होगा, एक नया जिंदगी शुरू करेगा, एक अच्छा होगा। तो प्रार्थना में बहुत बल है पूजा जी, हम प्रार्थना करते हैं बहुत। तो फुटपाथ पर बैठा लड़का अचानक खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, भोलेपन की पहचान थी। उसने आगे हाथ बढ़ाया जिसमें था एक टुकड़ा सफेद कोरे कागज का। रास्ता सुनसान था, लड़का अनजान था। नजर मेरी जब उस पर पड़ी थी, वह अपने खेल में मग्न था। नीचे बिखरे कागज के टुकड़ों में कुछ ढूंढ रहा था। कमीज उसकी बटनहीन थी, हाफ पैंट नितंब पर अटकी थी। चिन्ह था गरीबी का, पर आंखें उसकी चमक की धनी। मेरे चेहरे पर गड़ी थी, उसने हाथ आगे बढ़ाया जिसमें था कागज का टुकड़ा। मन हिचकिचाया, फिर भी कागज का टुकड़ा लेकर दिखा। एकदम सफेद था, कोरा था। तभी आवाज आई अंदर से, टुकड़ा पूरे कागज का नहीं, यह प्रतीक है उस बालक के पूरे निष्पाप निश्चल मन का। तब दिमाग के कंप्यूटर से, क्योंकि हर सवाल का आजकल निकाल लेता वही है हल, जवाब यह आया तपाक से। कोरा कागज होता ही है स्याही पोतने के लिए, कोरे कागज की नियति यही है। तो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ पूजा जी, औरों से मौका दिए जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बसंती जी, और शुभ संध्या आपको।
2: आपको भी।
1: चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। श्यामा जी नमस्ते।
3: नमस्ते पूजा, आप आई बाहर आ गई, प्रोग्राम में चार चांद लग गया।
1: धन्यवाद श्यामा जी, चलिए बताइए आपको क्या कहना है आज।
3: मैं क्या कहूँगी, हर सप्ताह मेरे यहाँ यही होता है, मेरा रेडियो को पता नहीं क्या हो जाता, बीमार हो जाता है।
1: रेडियो
3: शनिवार को प्रोग्राम अच्छी तरह से सुन पाती हूँ, और नहीं रविवार को। तो मैं तो मोबाइल पर कभी कभार सुनती हूँ, और वो भी कभी ठप पड़ जाता है।
1: अच्छा, कोई बात नहीं।
3: तो मैं ये कहूंगी कि आस और विश्वास पर यह दुनिया टिकी हुई है। इंसान हमेशा से आशावादी होते हैं, न वे हारना चाहते हैं न वे गिरना चाहते हैं,

0: चाहे वह कितनी भी निराशा के अंधेरे में डूबे रहते हैं, फिर भी उस अंधेरे से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि उनके मन में यह अटल विश्वास है, यह धारणा है कि मैं अवश्य कामयाबी की शिखर चूमूंगी या चूमूंगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब जैसे कि उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को ले लीजिए, वह हमेशा परीक्षा में असफल होता है। वह तो रात दिन सभी बच्चों की तरह मेहनत करता रहता है, पर असफल का कारण क्या है वह समझ नहीं पाता है। पर उसने मन ही मन में यह ठान लिया, संकल्प कर लिया, चाहे कुछ भी हो मुझे सफलता प्राप्त करनी होगी, मुझे सफल होना चाहिए। तो उनके मन में क्या होता है, वो दृढ़ विश्वास रखता है अपने मन में कि मैं कामयाब होऊंगा और जमाने को दिखाऊंगा कि मैंने भी मेहनत की है। और उनके मन में जो मेहनत है, लगन है, श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास के कारण अपने पैरों पर सिद्धि प्राप्ति कर लेता है। उसकी जो निराशा है आशा में बदल जाती है, वह स्वावलंबी होना चाहिए, क्योंकि हारना जीतना तो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है पूजा। हम इसी आस में जीते हैं कि दुख के बाद सुख है, दुख के बाद सुख है और सुबह के बाद शाम है। इसी आशा में जीते हैं ना। सवेरे जब रात बीतती है तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य की किरण, उस किरण को देखकर एक नई उमंग, नई आशा हमारे मन में जन्म लेता है, पनपता है ना, कि आज मुझे ये करना है, वो करना है, और मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करना है, भगवान मुझे शक्ति दीजिए। तो इस प्रकार से जीत होती है। बेआसरा नहीं होना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए
1: जी।
0: क्योंकि जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं से एक रास्ता खुल ही जाता है, मिल ही जाता है। और किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए
1: जी।
0: अपने आप में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरी बराबरी वो नहीं कर सकता है, मेरे बच्चों की बराबरी वो नहीं कर सकता है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए मन में। कहते हैं ना, सबके सुख में सुख है, सबके भला में भला है। तो किसी की खुशी को न देखकर जलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मन में दृढ़ विश्वास कर लेते हैं ना, मुझे ये बनना है और बन के दिखाना है। और वो जो ऐसे सोते हैं और जिस जो लगन मेहनत से काम करते हैं, उसकी जीत होती है पूजा। और वो जब उसकी जीत होती है तो लोग क्या करते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं।
1: हाँ
0: कि नहीं
1: जी जी, ये तो है। पर जीत उसी की होती है जिसमें वो सच्चाई है,
0: सच्चाई है और दृढ़ विश्वास है, संकल्प है, जलन नहीं है। हाँ कि नहीं।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो ये है मेरा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी, आप हमेशा आशावादी हैं और हमेशा आपने सभी को जो भी आपने कहा है सब सही है। और जब भी मैं भी आपको सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं भी आपकी तरह बन जाऊँ और आशावादी बनूं। और
0: हाँ, तो लोग कहते हैं ना, ठोकर खाने के बाद लोग संभलते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं खाते हैं, एक मान लिया जाए एक बार कोई असफल हो गया तो बार बार असफल तो नहीं होगा ना।
1: नहीं होगा जी।
0: एक बार आपने उसके खाने की थाली में मिट्टी डाल दिया तो दूसरी बार तो वो नहीं डालने देगा ना। एक बार आपने उसका भोजन, उसका निवाला छीन लिया, बार बार तो छीन नहीं सकते हैं, एक भगवान है।
1: हाँ
0: कि नहीं,
1: भगवान है जी।
0: हाँ, भगवान है। तो ओके,
1: बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या आपको भी।
0: और
1: नमस्ते। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। धनी जी नमस्ते।
2: नमस्कार पूजा जी।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप अच्छी है ना?
1: मैं ठीक हूँ, बताइए आप।
2: अच्छा है। देखिए पूजा जी, मैं कहता हूँ इंसान जन्म लेता है, हर प्राणी जन्म लेता है, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो। तो जन्म लेने के बाद बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। जब छोटे ही में कोशिश करते हैं चलने के लिए तो गिरता है। तो यही जीवन है, चले, उठे, गिरे, फिर से कोशिश करें। तो हम बड़े भी होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, जो जो हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, तो हमारा जीवन में हमें अनुभव मिलता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। देखिए भगवान को भी बहुत परीक्षा करना पड़ा, जंगल में जाते हुए राम भगवान

0: कितने मुश्किल से गुजरे। तो यही जीवन है, जीव कर फिर से उठने की कोशिश करें तो यही अनुभव मिलता है जीवन का। इसी में हमारा अनुभव है, इसी में हमारा लक्ष्य जो कहते हैं जीने का, इसी में आता है। तो चाहे बीमार हुए, पैसे खर्च करने पड़े, डॉक्टर के पास गए, अनेकों मुश्किल होते हैं हमारे परिवार में, मृत्यु होती है। तो ये सब है जीवन में, भगवान ने पैदा किया है, ये सब होता जाता है, होते रहेगा। तो यही अनुभव है। जो जो आप देखिए, हमारे सुखलाल, हमारे चाचा जी, आपके दादाजी मोहताज ब्लास वाले,
1: हाँ
0: ये और हैं हमारे बहनें, कितने वृद्ध हो गए हैं। तो उनका
1: जी
0: अनुभव होता है जीवन में।
1: हाँ जी
0: जो जो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपको अनुभव मिलता जाएगा जीवन का। यही है जीवन,
1: ये है जीवन जी
0: संभलने का एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, अनुभव मिल जाता है कि कैसे गिर कर उठें। तो यही बात हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए कि
1: हाँ
0: मुश्किल आती है तो कैसे हिम्मत रखना चाहिए, हौसला
1: जी
0: रखना चाहिए।
1: जी
0: इसी का नाम है जीवन।
1: जीवन बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद धनी जी। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी सुनते हैं। हेलो
2: हेलो बहन जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका शुभ
2: पूजा
1: नाम।
2: जी, पूजा जी आवा तू।
1: हाँ जी पूजा जी, बोलिए।
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम रख ले बखू, मौस मौस से नहीं सुन ली, भगवान प्रसन्न थे।
1: नहीं, ई आशा, आशा जब,
2: आशा भगवान पर,
1: हाँ आशा पर, जब जीवन में सब कुछ जैसे ऐसे लगेला कि सब कुछ खत्म हो गया, तो जीवन में एगो आस रहेला ना कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हुई इस पर।
2: बहुत अच्छा हुई,
1: हाँ
2: बहुत
1: बोल।
2: अच्छा। सब कैसे बोला था, जीवन में सब कुछ बा, तो सब कुछ बा हाँ, तो उनका सबसे बड़ा सबले जस्ती के कौन चीज से बा, भगवान के। और जब दुख आवे रहते तोहरा को परीक्षा लेवा था,
1: हाँ
2: देखा था तोहरा, तू याद करवा उनका, नहीं रोज तो भूले नहीं जा, तो रोज अपन हेने वेने करा था उनका, रहा यादें नहीं जा।
1: हाँ
2: जब दुख आई तो अब आंसू भर जाए, जब नहीं भाई का करबा, अब रोईबा, तब बहुत देरी हो जाला। जब अच्छा रहा तब भी उनका था ना, जगह बना लेगे अपन संगी, एगो जगह बना लेला साफ कुमार जी, जो कौन दुख रही तौर में, तो उनकरा तोरा खोजे नहीं चाहिए, तो अपन अंदर में रख ले। वो हमार पर बहुत कली दे दुख आल, बाकी भगवान बहुत सहारा दिलन, बहुत सहारा दिलन, सिर्फ है आंसू और उनका रहे याद, है ये दुगो चीज। और साफ रहा कोई चंगा जी, सच्चाई झूठ, एगो कोनो दुखो रही तो झूठ का ही बतेबे, एगो कैसे बोलेगा, एगो आदमी तो हर बिया भी नहीं बात, ओकरो से भी बोल देगा, वो भले से हंसी चाहे कुछ करी, सोना दुखवा उनके जना दा, ऐसा दुख बा हमार में, लुका के नहीं रखा भीतरे में, कि एगो दुख बा कि ऐसा नदी हंसी हमरा, बस वो देखा था मानू लाहो से कौन चीज करी, देखी जाए के हम। भगवान बहुत सहारा देलन माँ, दुख में चाहे कहियो घबराए कि नहीं, बुद्धि मिलेला निमन, भगवान देवेला न अच्छा बुद्धि, एगो रास्ता खोजिया, एगो रास्ता बतलिया, थोड़ा है रास्ता पर थोड़ा चले जाए, तो दुख कटित हो, देखूंगा आगे नहीं हो जा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार के लिए, और शुभ संध्या आपको। धन्यवाद
2: धन्यवाद पूजा।
1: धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। आशा जी नमस्ते।
3: हेलो नमस्ते पूजा जी, और समस्त श्रोताओं को भी आशा जानने को से सादर नमन है। और विषय के अनुसार मैं ये कहूंगी पूजा जी, जहाँ पर अंधकार होता है वहीं पर प्रकाश होता है,
1: जी
3: जहाँ पर निराशा होती है वहीं पर आस होती है, बस आस पे विश्वास रखो।
1: जी
3: और कहते हैं ना पूजा जी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसा क्षण आता ही है जहाँ पर हमें निराशा का सामना करना पड़ता है, और अब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, पर जो हमारे अंदर की आस होती है वो हमें संभालती है, कहती है तुम हिम्मत मत हारो, मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो, मैं हूँ, हिम्मत मत हारो। और अगर इस आस को हम मरने देंगे, यदि यह आस मर जाएगी तो जीने की आस छूट जाएगी। तो जीने की आस को बनाए रखने के लिए दिल की आस का रखना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और यह जो आस होती है वो हमें प्रयास करने के लिए सदा प्रेरित करती है। एक बच्चा जब चलने की कोशिश करता है वो बार बार गिरता है, संभलता है गिरता है, पर वो आस नहीं छोड़ता, कहता है कि मैं भी दौड़ूंगा, मैं भी चलूंगा,

0: बार बार गिरती है, पर आखिर में वो अपनी मंजिल को पा ही लेती है। तो इसलिए कहती हूँ पूजा जी, ये जो आस होती है वो हमारी जिंदगी जिंदगी को जिंदा रखती है, और जिंदगी को कैसे जिंदादिली से जीना चाहिए ये सबक हमें, ये बात हमें पढ़ाती है। तो इसलिए कहती हूँ पूजा जी, ये जो आस होती है ना, इसको हरदम अपने दिल में एक ज्योत की तरह जलाए रखना चाहिए। ये आस कहती है हमें कि अगर 100 बार तुम हार गए तो एक न एक बार तुम्हारी जीत तो पक्की है। तो आस का दामन थामते हुए, उम्मीद का दामन थामते हुए इस जिंदगी को हम ले जाएंगे तो जिंदगी बहुत बहुत उज्जवल भविष्य को धारण कर सकती है। तो आस पर विश्वास रखते हुए आप सभी को कहूंगी शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए, और बहुत अच्छा कहा आपने। जीत उसी की होती है जिसमें वो सकारात्मकता है, और मैं तो यही कहूँगी कि आस जो है अपने अंदर जलाए रखिए, और ये भी है कि किसी को झूठी आस देना भी बहुत बुरी चीज़ है। जब आप किसी की मदद कर सकते हैं तभी आस देना, जब आप किसी को छोटी उम्मीद देकर आस को तोड़ते हैं तो आंसू भी कहीं ना कहीं दर्द देता है, और वही दर्द आपका बुरा कर्म बनकर अवश्य आता है किसी न किसी रूप में। तो आइए, और भी श्रोता हैं लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो,
2: शुभ नमस्कार पूजा जी।
1: शुभ नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा है। पूजा जी,
1: जी
2: आपके विषय पे आने से पहले अगर आज्ञा हो तो एक दो बात कहूँ।
1: कहिए।
2: देखिए, जब आपके कार्यक्रम में भाग नहीं लेता हूँ तो मेरे लिए सब कुछ खत्म नहीं होता है। मेरी आशा है कि फिर से आपसे बात करूँगा कभी न कभी।
1: जी।
2: इसी प्रकार अगर कुछ प्रश्न आपके लिए अभी भेज नहीं पा रहा हूँ तो मेरी आशा है कि जब स्थिति सुधर जाएगी
1: जी
2: तो मैं फिर से इस काम में लग जाऊंगा।
1: बहुत
2: आशा
1: बहुत
2: करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत हैं।
1: मैं सहमत हूँ जी।
2: देखिए, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं झूठी प्रशंसा भी नहीं करता
1: जी।
2: मैं जो कुछ बोलता हूँ मैं दिल की गहराई से बोलता हूँ
1: जी,
2: क्योंकि मैं किसी को कभी झूठ वचन या ये जब वचन देता हूँ
1: जी
2: तो इसका मुझे ख्याल होता है कि मैंने क्या कहा। क्षमा करिए मुझे
1: जी।
2: अब आता हूँ आपके विषय पे।
1: चलिए बताइए।
2: देखिए, आपने जो कहा जीवन में मैं कहूँगा कुछ खत्म नहीं होता है, जब तक सांस है जब तक प्राण है तब तक हमें इस लड़ाई से हमें लड़ाई में लगना चाहिए। दुख के समय में मैं कहूँगा या मुश्किल की घड़ी में यह कहना कि सब कुछ खत्म होता है यह गलत है, यह नकारात्मक है। यह जीवन एक चक्र है, आशा पूर्ण रहे। जैसे रात के बाद सुबह होता है उसी भांति दुख के पश्चात सुख आता है। दुख एक परीक्षा है, भगवान हमसे परीक्षा लेते हैं। दुख हमको मजबूत बनाता है और अनुभव प्राप्त होता है। विपरीत रास्ते से निकलने के लिए धर्म ग्रंथों की ओर जाना चाहिए, संस्कार ग्रहण करो करना चाहिए, सुधार दिखाई अवश्य देगा। हमारे यहाँ बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, गीता रामायण उपनिषद इत्यादि ग्रंथों को केवल अलमारी में शोभा बढ़ाने के लिए नहीं रखा जाए। इसका स्वाध्याय करो, इनका स्वाध्याय करो, रास्ता अवश्य दिखाई देगा। ये धर्म ग्रंथ पहले से हैं, प्राचीन समय से हैं और अभी भी हैं, जिनसे दुख सुख प्राप्ति हेतु अनेक रास्ता यानी कि हमें

0: अनेक साधन बताई गई है। मैं समझता हूँ अच्छी प्रवचन, अच्छी पुस्तकों की पाठ आदमी को क्षमा करीब संभालने की राह बताती है। देखिए पूजा जी, संक्षेप में कहता भी हूँ कि ईश्वर के सिवाय और कोई है नहीं में। तो पूजा जी, ऐसे कितने अच्छे विचार हम साझा कर सकते हैं, पर ये समय का अभाव है। रेडियो पर आपने मुझे कुछ समय दिया इसके लिए, प्रदान किया मुझे समय, इसके लिए आपको धन्यवाद कहकर
1: धन्यवाद
0: आपको शुभ
1: धन्यवाद।
0: संध्या कहता हूँ। फिर मिलेंगे, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ। अभी गुजर जाने दो कुछ कठिन परिस्थितियाँ, तो मैं आपसे बात करके आपसे कुछ
1: बहुत
0: क्षमा
1: बहुत धन्यवाद नवीन जी।
0: करिए अगर मेरे अति में कुछ यानी कि ब्रेक हो गया, जैसे बोलते
1: नहीं,
0: हैं।
1: कोई बात नहीं। और मैं कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए नवीन जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो भी समस्या है, एक आस रखती हूँ परमात्मा से कि आपका जो भी समस्या है वो उसका निवारण अवश्य मिले।
0: बहुत
1: और
0: बहुत
1: आप यूं
0: धन्यवाद।
1: ही हमेशा
0: शुभ
1: स्वस्थ रहें। शुभ
0: शुभ
1: संध्या आपको।
0: संध्या। शुभ
1: आपको भी नवीन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: एक और श्रोता है, चलिए उनको भी हम अवसर देते हैं। हेलो,
0: हाँ बेटी,
1: प्रणाम नानी जी।
0: आशीर्वाद बेटी। कब तनी देरी होगा, आज कुछ नहीं सुने पड़नी।
1: हाँ, अरे बोला कोई। आज हम आस पर हमनी बात कर रहे थे जा,
0: धर्म के बारे में।
1: नहीं आस के बारे में, आस।
0: अच्छा बा, अच्छा बा,
1: हाँ
0: बहुत बहुत खुशी के बात। जितना अथी नाबिन जितना बतियाइलन सब सुन ली।
1: हाँ
0: हाँ सुन ली। हाँ तब बोला थे बाप रे बाप, चलो भगवान बोले एक से एक है, एक से एक है विद्वान। और सब में भगवान करे धर्म सब कोई मेरा है, हमर में तोहर में सब में, तो जीवन खुशी चली, अच्छा चली, चाहे ला देखे के इसने ही चली। और यज हवन पूजा पाठ है रेडियो के अथी जो मिलेला, ये बड़ी भाग से मिलेला, ये बातचीत करे के तो लोग से। तो लोग के बहुत धन्यवाद बेटी, बहुत मेर्सी, बहुत धन्यवाद। हम तो मुनियाद नहीं मिली, गल सप्ताह के हमके नहीं मिल रहा, एको में नहीं मिल रहा।
1: अच्छा।
0: हाँ आज हमके तनी सुन मिल गई, पिछला शांति करे के मिल गल। अच्छा अरे
1: चलो, धन्यवाद धन्यवाद नानी, धन्यवाद। आस जो है बड़ा ही प्रेरणादायक शब्द है। कहा जाता है, जब आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख भी मत दीजिए। आस भी उसी समान है। झूठी आस देना ये भी गलत है। और सच्ची बात तो ये है, जब आपने आपके अंदर जो सच्चाई है वो भर भर के, टूट टूट के भरा हुआ है, तो आपको कभी भी किसी भी स्थिति में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा उन्हीं को कठिन समस्याएं देती हैं जिसमें वो क्षमता है उस दुख को सहने के लिए। इसीलिए इसे एक वरदान के समान मानकर चलते रहें, इसी आस में कि आस पास है खुदा।

कोई रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़ल हवन जा सब कोई के हमनी दिल से स्वागत करत हैं जा और सब अपन पसंद के गीत हम तक पहुंचावे और नंबर तो वही है 4028085 पर और अभी खातिर चला गीतवा जितना कोई हमनी संगे जुड़ल हवन जा सब कोई खातिर खास तौर पर आफेज जी लाविनिया से सुनत हवन जा और रनीता खिदनी जी हवन ना और साथ में कमला जी मोताबा से।

तो चला है गीतवा की मांग कर ले रहा है कमला जी कातु कुकु से और बोला था वन खास तौर पर ओकर पतो खातिर जो नहीं जानेला भोजपुरी बताए तो है ये डाल दिलक है गीतवा के मांग कर ले बाते और खास तौर पर ओकर सब परिवार खातिर है गीतवा के मांग कर ले रहा। अब चला एगो और गीत हमनी सुनी रहा सा और ये गीतवा के मांग कर ले बाते सुनीता जी गाँव गोप से खास तौर पर डांट डांट के हमरा बोलेला डाल दिए हमर गीत है डाल दिए हमर गीत कहे हमर दोनों बहिन वन खातिर और विमला जी साथ में बाते अनीता जी और गीत के बड़ी पसंद करे रंजा। तो चला अभी हमनी सुनी ना सा सच्चे के बाते सिर और लोढ़ा के मसाला मोनीलेक्स के मसाला से ब्लेंडर के मसाला से जस्ट ही अच्छा है। एक तरकारी खैब।

तो चला है गीतवा खास तौर पर महेन जी जो पालमा से सुनत हवन जा खास तौर पर दीदी मान खातिर है गीतवा के मांग कर ले रहल। अब चला हमनी बराब जाए गौर गीत एगो जन्मदिन के गीत और गीतवा के मांग कर ले बाते।

निरवंती बुद्धू जी जो नुवेल फ्रांस के हवन और खास तौर पर रेवती शुक्लाल जी के जन्मदिन के अवसर पर बंधु परिवार की ओर से उनका ढेर ढेर शुभकामनाएं। और जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा, सब कोई के पूरे एमबीसी टीम के देने से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

तो हैप्पी बर्थडे जिन्ना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा, और अभी खातिर अनीता चाची चलाल हवन, और त्रियोले से हमने के सुनत हवन बोलत हवन कि आज लाफुआ और गलबा और जितना ठेला ठेली उ अपने जाए लाफुआ फिर से ओकर एगो सुशिव गिर गल काहे कि लेगिम गिर गल जे गल लेगिम खरीदे तो ओकर सब लेगिम गिर गल अब फिनो से नहीं जाए लाफुआ। अब भाइयो गीतवा के मांग कर ले बाते लीलो जी जो हमनी के सुना था वंजा, और धर्मावती जी, धर्मावती कालू जी, और साथ में ओकर सब परिवार जितना कोई अभी साथ देवा था वंजा। विनोद सुदत्त के गावल गीत ठेला ठेली के मांग कर ले वंजा, और जितना कोई गीतवा के पसंद करे नंजा सुना था वह तो हर पसंद कार्यक्रम

तो चला एक और गीत रेहाना जी नोत्र दाम से, और खास तौर पर है गीतवा जुन्हा बायायुब और साईदा जी खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते, और खास तौर पर सुरागिनी जी जो बुआ शेरी के हवनजा और सबीरा गो परिवार के

0: रानी सुकलाल जी ओकर सब बेटी खातिर और खास तौर पर आफेज जी लाविनिया से सुनत हवन बड़ी पसंद करे नंजा
1: मर मिट में गरम पानी सुना हो लोगो चढ़ल पमर मिट में गरम
0: और बसंती जी हवन बुबासे से
2: चढ़ल पमर मिट में गरम
0: खास तौर पर वीना रामफुल जी और श्यामा रघुनंदन जी नवीन लक्ष्मण जी आशा जानू जी विजय बंदन जी क्लावेट से चित्रा जी हवाना मौदाल बेया के

तो चला अंतिम गीत हमनी चलावा था इंजा और ऊ है शांता सुकारी जी से जैमिल से फावेस और रुकर सब नातीन परिवार खातिर जो से जैमिल फुगस्ताद के हवनजन और साथ में है ये गीत खास तौर पर शैला जी गौन हविया सुदेश से और त्रिवेणी जी अपन सभी मोहन परिवार के नाम आता चला एक संगे हमनी तोहार पसंद कार्यक्रम के अंत तक चला है इंजा जितना कोई कार्यक्रम में भाग ले जा सब कोई के बोलब जा बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्थ रहिया सुरक्षित रहिया।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 6 बजे हैं। नमस्कार, 19 जुलाई 2026 रविवार की शाम, स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। नजर सबसे आगे सुर्खियों पर। विश्व कप के फाइनल में अब कुछ घंटे बाकी, मॉरिशस समेत दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह। विश्व कप का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। स्थानीय श्रमिकों की कमी के बीच विदेशी कर्मचारी मॉरिशस की अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। कृषि, उद्योग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान सराहनीय। 2050 तक कैंसर के नए मामलों की संख्या दुगनी हो सकती है, जिससे हर साल दुनिया भर में लगभग 35 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। अपने वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट के संस्करण में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों से रोकथाम और शीघ्र जांच और उपचार को मजबूत करने की अपील की। विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच हमलों के बीच मध्य पूर्व में जल और बिजली का बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ, वहां पर युद्ध तेज किया गया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, सबसे बड़ा सबसे खास मैच, फाइनल आज रात होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा रात 11 बजे। ये मैच आप एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे। सुनिए,
2: अर्जेंटीना आज 2026 वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन के खिलाफ अपना खिताब बचाने उतरेगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूरो कप का मौजूदा चैंपियन स्पेन और वर्ल्ड चैंपियन कोपा अमेरिका का मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना एक दूसरे के आमने सामने होंगे। एक तरफ अर्जेंटीना है जो वर्ल्ड कप की मौजूदा चैंपियन है और लियोनेल मेसी के दौर में एक और ट्रॉफी अपने नाम करना चाहती है। दूसरी तरफ स्पेन की टीम जो अपने नए और टैलेंटेड खिलाड़ियों के दम पर दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीत

0: जीतने की कोशिश कर रही है। यह फाइनल मुकाबला दुनिया के दो सबसे बड़े फुटबॉल दिग्गजों की टक्कर है। एक तरफ मेसी है जो अपना तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है और दूसरी तरफ स्पेन के युवा सितारा लामिन यामाल है जो अपनी टीम की नई ताकत का चेहरा बन चुका है। सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर स्पेन की टीम का फॉर्म लगातार बेहतर हुआ है। फ्रांस के खिलाफ मैच में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्हें खिताब का दावेदार क्यों माना जा रहा था। साल 2010 में साउथ अफ्रीका में चैंपियन बनने के बाद ये पहली बार है जब आज 19 जुलाई को स्पेन की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। साल 2010 में स्पेन ने अपना फाइनल खेला था और नेदरलैंड्स को 1-0 से हराया था। वही अर्जेंटीना की टीम की बात करें तो ग्रुप स्टेज में अल्जीरिया, जॉर्डन, ऑस्ट्रिया को हराने के बाद उन्होंने नॉकआउट स्टेज में केप वर्दे, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड को बाहर का रास्ता दिखाया था। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी अपने कार्य में अब तक वर्ल्ड कप में 21 गोल स्कोर कर चुका है। 39 साल की उम्र में मेसी शायद आज रात अपने कार्य का आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेल रहा है। इस 8 बार के बालों दो विजेता ने वर्ल्ड कप के इतिहास पर ऐसी छाप छोड़ी है जो किसी और ने नहीं छोड़ी, जिसमें दो फाइनल मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड शामिल है। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच वर्ल्ड कप के इतिहास में 60 साल पहले सिर्फ एक ही बार मुकाबला हुआ था जिसमें अर्जेंटीना की जीत हुई थी 2-1 से। अर्जेंटीना और स्पेन का एक ऐतिहासिक और शानदार फाइनल मुकाबला एमबीसी 11 पर लाइव दिखाया जाएगा। मैच से पहले रात 9 बजे स्पोर्ट्स टीम की तरफ से एक खास प्री मैच शो भी दिखाया जाएगा।
1: और कल तीसरे स्थान के लिए मैच खेला गया फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। एक तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाने के लिए इंग्लैंड की टीम आखिरी तक रली। गोल्स की बारिश दोनों तरफ से हुई लेकिन अंत तक आते आते कप से हाथ धो देने वाला इंग्लैंड तीसरे स्थान पर आया। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
0: दो का वर्ल्ड कप 1966 के बाद से इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप अभियान रहा है, जहां 48 टीमों वाले इस 23वें एडिशन में रिलायंस तीसरे स्थान पर रहे। आज रविवार की सुबह एक बेहद रोमांचक मैच में टोमास टूगेल की टीम ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। हाफ टाइम तक अंग्रेज पहले ही 4-0 से आगे चल रहे थे, जिसमें पहला गोल तीसरे मिनट में ही into that far corner and you see there Maignan just does not move, he does not see it. Declan Rice ne ek behtareen long range shot ke zariye kiya. Pehle half mein Francisi team ne 3 aur gol khaye jisme Kunsa ne 18 winners mein goal score kiya aur Bukayo Saka ka double raha. Sooner rather than later. That's a lovely turn from Eze and a brilliant pass into Saka. अपनी टीम में जान फूंकने के लिए जीजे देशों ने उपामेकानो, जी बाकोला और देम्बेले को मैदान में उतारा और इसका असर तुरंत देखने को मिला। एम्बापे ने 48वें मिनट में अंतर कम किया। आखिरकार आक्रामक रुख अपनाते हुए फ्रांसिस टीम ने पलटवार किया और बारकोला ने एक गोल स्कोर किया। स्कोर 4-2 हो गया। 66वें मिनट में एम्बापे के एक और शॉट ने मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया। इसके बाद स्पेंस के एक मूव पर एक पेनाल्टी, मैग्नन के सामने साका ने दाई ओर शॉट मारकर पेनाल्टी को गोल में बदला और अपनी हैट्रिक पूरी की। इंजुरी टाइम में देम्बेले ने स्कोर को 5-4 कर दिया, लेकिन मैच के आखिरी पलों में जूड बेलिंगम के एक आखिरी गोल के साथ जे देशों के दौर का अंत एक हार से हुआ। फाइनल स्कोर इंग्लैंड 6, फ्रांस 4।
1: सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे, गन्ने के खेतों में, कारखानों या फिर निर्माण स्थलों में इनकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है। देश में कर्मचारियों की कमी के चलते

0: ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कामगार अलग अलग क्षेत्रों में काम करने आ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण योगदान है। सिर्फ विस्तार रिपोर्ट में।
1: ये एक ऐसा काम है जो अभी भी ये कामगार सीख रहा है। पिछले एक साल से मॉरिशस आया हुआ ये मलागासी श्रमिक यहाँ खेतों में काम करता है। दिन के कामकाज में उसे अपने तीन हमवतनों की मदद मिलती है। रिकाल आल्सो कहता है, मलागास्कर में ज्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम करने आया हूँ। हम सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं और दिन के 3 बजे तक काम करते हैं। मुझे यहाँ एक नया अनुभव मिला है और शायद एक दिन मैं अपने देश में भी ऐसा काम कर सकूं। स्थानीय स्तर पर कामगारों की कमी के चलते लामागी स्थित इस जमीन के मालिक को काम सुचारू रखने के लिए विदेशी कामगारों की आवश्यकता पड़ी। माहेन राम गुलाम कहते हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए मॉरिशन कामगार नहीं है, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। पिछले कुछ सालों के अंतर्गत मॉरिशन इकोनॉमी में विदेशी कामगारों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हुई है। 31 मई तक मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण सेक्टर में ऐसे 38,221 कामगार पाए जा रहे थे। ये दोनों सेक्टर सबसे ज्यादा विदेशी कामगारों को रोजगार देते हैं। मॉरिशस में सबसे ज्यादा भारतीय, फिर बांग्लादेशी और फिर नेपाली कामगार पाए जाते हैं।
2: हर महीना सैलरी मिलता है, रहने का खाने का सब अच्छा है और हम लोग बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं हमारा घर पे परिवार में। बहुत बहुत तरक्की हुआ मेरा लाइफ में यहाँ के। मैं घर बनाया, घर पे बहन का शादी कराया। काम अच्छा से करते हैं, मंडे से सैटरडे तक, फिर संडे को हम लोग बाहर जाते हैं घूमने का।
3: 10 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे इस कंपनी में। अच्छा कंपनी है, 3-4 बार रिटर्न आया मैं। बंगला इंडिया मिलके तो अच्छा काम करते हैं हम लोग, मॉरिशस वाले इतना काम नहीं करते हैं। इंडिया बंगला है, कंपनी चल रहा है।
4: मेसन का काम करता था, टाइल मेसन का, यहाँ पे वही कर रहा हूँ। सही है, खुश हूँ मैं।
1: नुवेलफोंस के इस टेक्सटाइल कारखाने में 10 साल से ज्यादा समय से विदेशी मजदूर काम करते हैं। वे वहाँ श्रम शक्ति का 85% हिस्सा है। ठेकेदार बिशम पमेसो कहते हैं, अगर मेरे यहाँ से विदेशी कामगारों को हटा दिया जाए तो मेरा काम बंद हो जाएगा। मर्शन लोग आते हैं और कुछ दिन काम करके चले जाते हैं। इन विदेशियों को ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, वे अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ आते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, वे हमारे लिए परिवार की तरह हैं। विदेशी कामगारों पर निर्भरता कई कंपनियों के सामने मौजूद वास्तविकता दर्शाती है। हालांकि इससे श्रम मंडी के भविष्य को लेकर सवाल भी उठते हैं। अर्थशास्त्री भविष्य जगन्नाथ कहते हैं, विदेशी मुद्राएं कमाने के लिए और वृद्धि लाने के लिए पैदावार और निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें मजबूरन विदेशी कामगारों पर निर्भर होना पड़ रहा है, नहीं तो अगर उत्पादन कम हुआ तो अर्थव्यवस्था के लिए परिणाम बुरा होगा। दूसरी तरफ विदेशी कामगारों का यहाँ आना इसलिए अच्छा है क्योंकि वे अपना अनुभव यहाँ बांटते हैं, लेकिन हमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है जहां पूरी निर्भरता विदेशी कामगारों पर न हो, जबकि लंबी अवधि के लिए ये भी अच्छा है कि ये विदेशी हमारे स्थानीय श्रमिकों को प्रशिक्षित करें। इन कामगारों के लिए मॉरिशस मुख्य रूप से जीवन बेहतर करने और अपने परिवारों को बेहतर भविष्य देने की संभावना जैसा है। 2026 की पहली तिमाही के दौरान ऐसे कामगारों की तरफ से 2.9 बिलियन रुपए उनके देशों की तरफ भेजे गए हैं।
0: ये एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि है और देश के पूर्वी इलाके के लिए पहली ऐसी सुविधा भी। फ्लक के सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल में उच्च टेक्नोलॉजी वाला रेडियोलॉजी मशीन लगाया गया है। इसका उद्घाटन 8 जुलाई को कई अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये उपकरण रेडियोलॉजिकल जांच को अधिक सटीकता के साथ और कम समय में पूरा करने में सक्षम है। इससे आपात स्थिति में तुरंत जांच कराया जा सकता है, जिससे जल्द से जल्द इलाज भी शुरू किया जा सकता है। साल 2050 तक दुनिया भर में सालाना तौर पर कैंसर के मामलों की संख्या 35 मिलियन तक दर्ज होने की संभावना है। कैंसर पर 2026 की वैश्विक रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से स्क्रीनिंग और इलाज के लिए कदम तेज करने की मांग की। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
5: 2050 तक कैंसर के मामलों की संख्या दोगुनी हो सकती है। कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैंसर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की ओर से प्रकाशित कैंसर की स्थिति की वैश्विक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। राष्ट्रसंघ महासचिव के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने कहा।

0: cancer claims more than 26,000 lives every day, with an estimated 20.6 million new cases and close to 10 million deaths annually. It remains the second leading cause of death globally after cardiovascular disease. WHO warns that without urgent action, the annual cancer cases are projected to rise to nearly 35 million by 2050.
1: WHO के मुताबिक 10 में से 4 कैंसर से बचा नहीं जा सकता। अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि दुनिया में डायग्नोस्टिक किए गए कैंसर के नए मामलों में करीब 40% न बचने वाले मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि तंबाकू, शराब, इन्फेक्शन और हद से ज्यादा वजन। दूसरी तरफ रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख कि कैंसर दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को भारी रूप से प्रभावित कर रहा है। देशों में इलाज उपलब्धता को लेकर भी काफी अंतर पाए जा रहे हैं।
0: The report also reveals persistent and widening inequities in access to prevention, diagnosis, treatment and supportive care. Its analysis shows, for example, that while 87% of women with breast cancer survive at 5 years after their diagnosis in high-income countries, only 42% survive in low-income countries.
1: चुनौतियों के बावजूद WHO ने कहा कि कई ऐसे सकारात्मक संकेत दिखाई दिए हैं, जैसे कि कुछ देशों में तंबाकू सेवन में कमी और पैपिलोमा वायरस के खिलाफ टीके की बदौलत सर्विकल कैंसर के मामलों में गिरावट। संगठन की ओर से सरकारों से कैंसर के खिलाफ संघर्ष और बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में अतिरिक्त निवेश करने की मांग की जा रही है।
2: यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने के 20 साल बाद अप्रवासी घाट ने इस सालगिरह को एक नए लक्ष्य के साथ मनाया। यादों को संजो कर रखना और साथ में मॉरिशस की विरासत को महत्व देना, इस अवसर पर कई परियोजनाओं का ऐलान भी किया गया। विदेशी समाचारों में जॉर्डन में 2 अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और तेज हो गया है। वहां लगातार 7वें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और बुलेटिन के अंत तक आते आते ये खास रिपोर्ट पेश हैं वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में, जो अब कुछ ही घंटों में खेला जाएगा। उत्साह बढ़ रहा है, तैयारी चल रही है, कुछ लोग बड़ी स्क्रीन लगवा रहे हैं तो अन्य घर पर ही दोस्तों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सजावटें, पकवान सब तैयार होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैच शुरू होगा 2-3 घंटों तक कोई स्क्रीन के सामने से हिलने की भी कोशिश नहीं करेगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: क्यूबेक के इस स्नैक में फुटबॉल प्रेमियों के बीच फाइनल का उत्साह काफी समय पहले से ही बन गया है। आरबी सेलेस्ट और मेसी के फैंस अपने स्टार खिलाड़ियों को मैदान पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।
4: Mon équipe favorite. J'espère que l'Argentine gagne.
5: On crée dans le foot et moi pensais que cette année quand même nous avons une forte possibilité pour regagner la coupe. Vamos Argentina.
3: Spain aur Argentina ke beech hone wale is bahupratikshit muqable ke zabardast anubhav ke liye sab taiyar hain.
6: Le trophée chez Weber Gardress exposé et aussi nous lance un jeu concours aujourd'hui. Il suffit juste de faire des prédictions.
3: फैंस के लिए इस विश्व कप की स्मृति के तौर पर अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी खरीदने का आखिरी मौका भी रहा।
7: Nous pas support de l'Argentine.
8: Pareil.
9: Pas ta laine deuxième étoile, le hat shirt là.
10: Final nous peut aller en Argentine, Espagne.
11: Dans le magasin qui me passe là.
10: Non, là ça va en tricot, on peut aller plus vite.
11: Prends un petit t-shirt là monsieur.
12: Oui, vous prenez des enfants.
3: मेबर्ग में भी दूसरी जगहों की तरह दुकानों को वर्ल्ड कप के रंगों से सजाया गया है। फैंस को कई हफ्तों से इस फाइनल का बेसब्री से इंतजार रहा है।
13: Oui, même pendant une grande ambiance, mais nous découvrons magasin, vous verrez.
14: Argentine, Espagne, ça va être très très très chaud, je crois.
15: Ça c'est un gros spectacle ça. Nous allons attendre ça avec tout nous la joie, nous espérer ce qu'il faut gagner.
3: बैनर्स, झंडे, गाने बजाने और त्योहार जैसे माहौल के साथ इस फाइनल को फुटबॉल के असली जश्न में बदलने के लिए सब कुछ तैयार है।
16: Moi, j'espérais
17: l'Espagne gagner et sa Coupe du Monde, une Coupe du Monde avec beaucoup de surprises. Surtout la part du Cap Verde qui a bien apprécié ce jeu.
18: I used to be flying helicopter in Argentina, so I know Argentina. And I know

0: Spain. Je parle, habla poco español. I speak a little bit of Spanish. So it's exciting.
1: ये एक ऐसी वैश्विक गतिविधि है जो सरहदों के दायरे से बाहर है और जिसे मॉरिशन फुटबॉल प्रेमी पूरी उत्साह के साथ जीते हैं।
2: चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। कल दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद सेंट्रल प्लेटू पर हल्के बादल घिरा सकते हैं और बारिश का भी अनुमान है। प्रवालेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। खासकर कल सुबह से दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 14 से 16, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:44 पर, शाम को सूर्यास्त 5:48 पर।

देश विदेश की नई खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज़ विभाग और तकनीकी पर फैजन का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। डोफेलिन शातो बेनारेस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्डर के श्री धरमदत्त कोटिक जो धरम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी मंगलवार को दिन के 11 बजे उनके बेटे उमेश कोटिक के मकान डोफेलिन शातो बेनारेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे एट 11 AM। रारोड ग्रांड रिट्रीट में 96 साल की 96 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रावती झरी जो विद्वंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सच्चिदानंद मुनिया के मकान रारोड ग्रांड रिट्रीट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। लासोस काथोबोन में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेन मर्टेन जो नादेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पेपेजा बेकरी के मालिक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके मकान लासोस काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतें मोरोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। डिस्पेंसरी रोड विच एम मिल थ्रियोले में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री इंद्रदेव बंधन जो आत्मा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनकी पत्नी नर्मदा बंधन के मकान डिस्पेंसरी रोड विचिया मिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: NBC Radio, 24 hours a day.
1: सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। कोरोमंडल के इन इलाकों के ग्राहकों को मोसलमान एर्मिटाज, अवेन्यू पानोरामा, अवेन्यू जुपिटर, अवेन्यू प्लूटो, अवेन्यू सैटर्न, अवेन्यू मार्स, अवेन्यू कोल्फिन और अवेन्यू काबोश के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 20 जुलाई 2026 के प्रातःकाल के 8:30 से लेकर शाम के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी ग्राहकों को सूचित करता है कि जैसे ही मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे तैसे ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति इन असुविधाओं के कारण अपनी क्षमा प्रार्थी हैं। सो ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।

Opening， 马里西斯广播电台听众朋友您好，欢迎您来到周日晚风歌单。下面就让我们来一起进入今天的节目。

好，听众朋友，时间过得真快，今天的晚风歌单就到这里跟您告别了，谢谢您的收听，下次节目我们再会。

0: This is Radio Marches.
1: Assalamu alaikum. Kimchi Mauritius.
2: Namaskar.
3: Shrotalandariki Hrudayapurvaka Namaskaram.
4: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
5: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
6: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। तो चलिए श्रोताओ, आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं आपकी सेवा में चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान इस कार्यक्रम के अंतर्गत। हमेशा की तरह कार्यक्रम का जो शुभारंभ हम करते हैं वह एक शुभ विचार के साथ। अपने भीतर श्रद्धा का दीप जलाइए, सेवा का प्रकाश फैलाइए और प्रेम की रोशनी जो है, जी हाँ, प्रेम की जो रोशनी जो है संसार को अलौकिक करते रहे, यही आध्यात्मिक जीवन का सच्चा प्रकाश है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं। वैसे प्रकाश केवल आंखों से दिखाई देने वाली रोशनी नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का प्रतीक है। जब जीवन में ज्ञान, प्रेम, सत्य और करुणा का प्रकाश फैलता है, तभी अज्ञान और भय का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। तो चलिए कार्यक्रम की अगली भेंट में ये बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान आपकी सेवा में।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे ईश्वर का प्रकाश किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, वह हर जीव, हर प्रकृति और हर शुभ कर्म में अनुभव किया जा सकता है। जो स्वयं के भीतर इस प्रकाश को पहचान लेता है, वह दूसरों के जीवन में भी प्रेम, शांति और प्रेरणा का दीप जला सकता है।

श्रोताओ, प्रकाश बाहर से नहीं भीतर से प्रकट होता है। यह तब जागता है जब मन में श्रद्धा, कर्म में निष्ठा और हृदय में ईश्वर के प्रति समर्पण होता है। यही प्रकाश हमें सही और गलत का विवेक देता है तथा जीवन की हर परिस्थिति में आशा बनाए रखता है। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम हम इस कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। जाने से पहले आइए ये शुभ विचार सुनिए। जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तब जीवन का हर मार्ग प्रकाशित हो जाता है। तो चलिए, जाने से पहले हम अपने तकनीकी सहायिका अंजू को धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की उर्दू नशरियात महफिल शब में हम आप तमाम सामीन का खलूस व मोहब्बत के साथ खैर मकदम करते हैं। दिल से दुआ है हमारी कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से रहें। सामीन कराम, आइए महफिल शब का आगाज़ इस कलाम से करते हैं।

करें, उनकी परेशानियों को समझें और उनके जज्बात का एहतराम करें। घर का वो माहौल जहां मोहब्बत, एतमाद और गुफ्तगू हो, वहां बच्चे अखलाकी और दीनी एतबार से ज़्यादा मजबूत शख्सियत के मालिक बनते।

से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, क्या मेरे लिए तौबा की कोई सूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसके साथ हुस्न सुलूक करो। इस हदीस से मालूम होता है कि वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना भी वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हिस्सा है। इस्लाम सिर्फ वालिदैन की ज़िंदगी में खिदमत का हुक्म नहीं देता, बल्कि उनके ताल्लुकात, दोस्तों और ख़ानदान वालों की इज़्ज़त करने की भी तालीम देता है। अगर वालिदैन दुनिया से रुख्सत हो जाएं, तो भी उनकी याद को ज़िंदा रखने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि उनके अजीज़ों के साथ मोहब्बत और एहतराम का मामला किया जाए। ये अमल वालिदैन के लिए सदकाए जारिया बन सकता है। मोहतरम सामीन, महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का

रात के 9:12 श्रोता लोग, सभी प्यारे श्रोतागण के हमार नमस्कार स्वीकार करा जा। आज है रविवार के दिन और वो रात्रि में त ठंडा गिराता तो हर खातिर भोजपुरी तर का मन कर ले कोनो बढ़िया गाना सुने के ता अवश्य नंबर वा मिला ला और झट से मांग करा जा। का सौंदे काथोवा सैक उषा तो हर संगे रात के 11 बजे ले। चला आज का पहल का गीत कृषि के।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

0: भोजपुरी तड़का।
1: हमनी के भाई बहन लोगन आशा करत है कि तो लोग अपन शरीर के ख्याल रखत आवाजा स्वास्थ्य या सबसे बड़ा धन है। रोज़ रोज़ के व्यायाम करा जा, कोनो बोलेला कि समय नहीं मिलेला, 24 घंटा में 15 मिनट निकाला और तुहर रूप में निखार चलाई। तो चल दामाद बाबू के बाद सुना पुनल हिरीलाल के गावल गीत, और ये गाना जितना कोई की वक्त हमने के सुनाता और फुटबॉल देखे खातिर फाइनल वर्ल्ड कप देखने खातिर तैयारी करता बन जा चला। और ये गाना खास कर रोहित जी खातिर जो हमने के ये वक्त सुनाता बोबासा से।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:30 संगतिया लोगन, आज तो विश्व भर के लोगन के जबान पर एक ही बात, वर्ल्ड कप के महान फाइनल और स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में धमाकेदार मैच, केकर जीत होए केकर हार इता समय के पास जवाब बाते। चला रात के 11 शुरू होता, अपन टीवी के स्क्रीन के साफ कर जा और चमके के चाही। तो चला अगला गीत रूपा खातिर जन रहिला क्यों पे पौरी बखत हमनी के सुनाता गाना मांगा तवंजा, पति रजन और बेटी आरती के लिए।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:47 हो गल बा। वर्ल्ड कप 4 बरिस में एक हला आवेला। 104 मैच, 48 टीम, अब केवल 2 टीम रह गए। का अर्जेंटीना के मेसी बनी मसीहा या स्पेन के यमल आज करी कमाल। ये देखे के चाही तोहरो जीवन भी वर्ल्ड कप की नियर बा। हर राह पर हर मोर पर तोहरा चाहेला समस्या से लड़ते रहे। विश्वास रखिया तोहर जीत निश्चित है।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 10:03 हो गल बा। श्रोता लोग, आजकल के ज़माना में खाली पुरुष नहीं बल्कि महिला लोगन भी फुटबॉल और स्पोर्ट्स में रुचि रखे लन जा। कहाँ से कहाँ पहुँचा गल बा महिला, एगो समाज के आगे बड़े जे खातिर महिला और पुरुष के कंधा से कंधा मिला के चले के। तो चला अगला गीत, नीलरज गुप्त माधो के गावल गीत फिनो से, और गाना इंद्राणी जी खातिर जो इ वक्त हमने के सुनाता क्यू पिप से। और विनोद जी, जी हाँ विनोद भाई साहब, कैसे हुआ? गाना तो हर खातिर और तो हर परिवार खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
2: श्रोता लोग बढ़िया बढ़िया गीतवन के मजा लेवा तवन जा तोहरे लिए भोजपुरी तड़का के सिलसिले रोज के रोज चाहेला और सातों दिन एक सप्ताह में गीतवन के साथ गमत होता। तो चला अगला गीत माधवी खाते हैं जन हमने के सुनाता वाकवा से गाना मांगा तवन चा बेटा केशव और बेटी खुशी खाते हैं।

रात के 10:33 हो अलबा श्रोतालो जिंदगी जोन हता एगो रहस्य है एकर अर्थ कौन ची है कोई के पता नहीं चलेला अर्थ ढूंढते ढूंढते जिंदगी खत्म हो जाला पर जवाब नहीं मिलेला यही खातिर बोलल जाला चार दिन के जीवन में जी भर के जिला और समय नहीं बाते अहंकार और नफरत करे के तो चला अगला गीत इंद्रासन से ढोलक ललिता पुनीत के गावल गीत

चलो देखते देखते रात्रि के 11 बज जाए तो हर से अनुमति लेके समय आ गल बा। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच भी शुरू हो बे करी तो चलो जोन टीम ज्यादा बरियार बा जोन ज्यादा हो गया योग्य बातें ओकरे जीत होई। आज बहुत फैंस खुश हो जन और बहुत फैंस निराश पर अंत में स्पोर्ट्स के विजय होई। जीवन में तोहरो विजय होई। चला अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और हमर और से नमस्कार शुभ रात्रि।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
4: आप सभी लोगों का गिनिशा का प्रणाम और स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से सफर में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। वैसे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ना कि वक्त जो होते हैं कभी वापस नहीं आता, लेकिन मैं कहती हूँ एक अच्छा गीत वक्त को ना ज़रूर वापस लेकर आता है। एक ही पल में हम फिर से स्कूल के दिनों में पहुँच ही जाते हैं, या किसी शाम को, बड़ी खास शाम को, या किसी सफ़र या किसी खुशबू को फिर से हम जी लेते हैं। और इसीलिए तो हम सब पुराने गीतों से इतना प्यार करते हैं। तभी तो गिने चुने नगमे को लेकर हम आए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए सुनहरे पल में। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
5: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

वैसे आपने सोचा है कि अगर कभी बारिश हो, हाथ में चाय हो और बैकग्राउंड में पुराने बॉलीवुड के गीत, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल दोस्तों, सच बताइए, इससे ज्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। तो चाहे आज मौसम कैसा भी क्यों ना हो, हम आपके दिल का मौसम जरूर सुहाना बना देंगे और सुनहरे पल में बस बड़े शिद्दत से आपका साथ देंगे। आप भी बने रखे हमारे साथ और बैठ जाइए आराम से हमारा साथ देने के लिए। इन खूबसूरत नगमों के जरिए आपके दिल का हाल हम जरूर बयां करेंगे।

दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गरिया।

वैसे जिंदगी में नए लोग मिलते रहते हैं। बिल्कुल जी, जिंदगी में तो नए लोग मिलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं ना जो बचपन से लेकर आज तक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जब भी दिल उदास हो या खुशी को और बढ़ाना हो, बस एक पुराना गीत चला लीजिए और देखिए कैसे दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। और आपके दिल को हल्का करने के लिए एक ऐसा गीत हम पेश करना चाहेंगे जो शायद हो सकता है आपके फेवरेट हो। तो चलिए, ये अगला नगमा गिनिशा की तरफ से आपके नाम, आपके उन खूबसूरत यादों के नाम।

वैसे एक जमाना था जब लोग कैसेट रिवाइंड करके अपना फेवरेट गाना दोबारा सुनते रहते थे। और आज प्लेलिस्ट में हजारों गाने होते हुए भी दिल वही पुरानी मेलोडीज ढूंढता है ना, क्योंकि असली म्यूजिक वही होता है जो सालों बाद भी दिल में उतर जाए। और आज हम वही अनमोल नगमों को लेकर आए हैं आपके लिए सुनहरे पल में।

दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं है, ये सफर है अपने बचपन से मिलने का, अपने यारों से मिलने का और उन लोगों को याद करने के लिए जिनके साथ आपने ये गीत कभी गुनगुनाए थे। तो जहाँ भी हैं मुस्कुराइए, आप दिल खोलकर मुस्कुराइए और दिल खोलकर सुनिए और हर गीत को अपनी कहानी का हिस्सा बना लीजिए। हम हैं गिनिशा और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये खूबसूरत खूबसूरत गाने जो हमने पेश किए आप लोगों के लिए सुनहरे पल में? अच्छा लगा ना? वैसे और भी खूबसूरत गाना अगर ऐसे ही आपको सुनना है, अपनी यादों में फिर से डूब जाना है, तो हम आपको फिर से रेंडेवू देते हैं एक और खूबसूरत सुनहरे पल में, रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना।

तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये खूबसूरत खूबसूरत गाने जो हमने पेश किए आप लोगों के लिए सुनहरे पल में? अच्छा लगा ना? वैसे और भी खूबसूरत गाना अगर ऐसे ही आपको सुनना है, अपनी यादों में फिर से डूब जाना है, तो हम आपको फिर से रेंडेवू देते हैं एक और खूबसूरत सुनहरे पल में, रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना।

You're listening RM Free Radio. Radio. Radio. Radio.

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: दिस इज समथिंग

0: मालूम था पहले से।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: ए, बोल ए कचुंबर।
2: अरे बोल पाखंडी,
1: तू शुरू करता है क्या?
2: अरे तू ही शुरू कर।
1: अच्छा ठीक है, सुन ले।
2: सुना
1: सरे गा रे गा रे गा पा गा पा गा पा दा पा दा पा दा पा दा सा सा दा पा दा पा गा पा गा रे गा रे सा सा दा सा पा दा गा पा गा रे गा सा बोल बोल बोल झटपट।

0: बात है फिर देखो
1: दिखा।
2: देख कमर का काम जरा डिंडारा डिंडारा डिंडारा डिंडारा डिंडारा डिंडारा।

0: किसके मधु बोल हसीना ये है बड़ा बिना
1: लेट गया। अरे सो गया, एक कुंभकर्ण की औलाद सो गया। तू हार गया, मैं जीत गया। 1 2 3 4 चल।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।